मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 9 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुँच गया है।

0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम के ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार मंथन।

जीवन में पहली सफलता के बाद रुके नहीं, क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।

अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले सुनिए समोह स्वर में ये पारंपरिक देशभक्ति रचना।

अभी आप समोसर में ये देशभक्ति रचना सुन रहे थे, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में बिना संजय कुमार का लिखा ये भजन। आदिशक्ति जगदम्बा, वे ही परम शक्ति हैं जो इस संसार को बनाती हैं, चलाती हैं और अंत में स्वयं में विलीन कर लेती हैं। वे मूल रूप से एक ही हैं, लेकिन समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, माँ दुर्गा के रूप में वे महिषासुर जैसे राक्षसों का अंत करने वाली और न्याय की स्थापना करने वाली मानी जाती हैं। वे भक्तों के लिए परम गति और आश्रय हैं। दुखों और शत्रुओं के बीच वे ही रक्षा करने वाली भवानी हैं। आदिशक्ति जगदम्बा उस परम चेतना और ममतामयी माता का प्रतीक है जो समस्त चराचर जगत का आधार है और अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है।

अभी आपने ये भजन सुना और श्रोताओं अब आपको सुनवा रहे हैं सिंपल राजा का गाया ये भजन, जिसमें वो भगवान शिव भोलेनाथ से अपने हृदय में आकर विराजमान होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे निर्दोष और सरल हृदय में आप निवास करें, मेरे मन के सारे विकारों को दूर कर आप मेरी आत्मा में आकर बस जाइए। मैं आपको प्रेम और भक्ति से बुला रहा हूँ, आप मेरे मन मंदिर में पधारें। ये अहंकार को त्याग कर ईश्वर को अपने भीतर महसूस करने की प्रार्थना है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चिंतन। आलेख श्रीमती आशा दुबे का है, वाचक है शैलेंद्र जोगी।
1: मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ये चर्चा छिड़ी थी। मित्र मंडली में सब अपनी अपनी डेंगे मार रहे थे। सबको लगता था उसका पक्षी सही है, वो जो कह रहा है वही अंतिम सत्य है। इस सत्य के बाद और कुछ सत्य है, ये मान्यता ज्ञान का मार्ग खोलती है और इसके बाद शेष कुछ नहीं, ये मान्यता जड़ता देती है जिसमें ज्ञान की खोज का रास्ता बंद हो जाता है और अहंकार का उदय होता है। ईश्वर ने यह सृष्टि ही भिन्नताओं से बनाई है। एक वस्तु दूसरे की पूरक तो हो सकती है पर ठीक वैसी नहीं हो सकती। हम दुनिया की बात न करें, केवल हिंदुस्तान की बात करें तो भारत में 75,000 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। इनमें 50,000 कीटों की प्रजातियाँ हैं, अन्य प्रजातियों में 4,000 प्रकार के मोल, 2,000 प्रकार की मछलियां, 1,200 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, 420 सरीसृप प्रजातियां, 340 स्तनधारी प्रजातियां और 140 प्रकार के उभयचर जीव पाए जाते हैं। इसी तरह पेड़ पौधों की लगभग 45,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें फूल वाले पौधे 15,000 तो 5,000 प्रकार के शैवाल, 2,000 कवक प्रजातियां, 2,700 प्रकार के बायोफाइट्स, 1,600 लाइकने और 600 प्रकार के फर्न प्रजातियां हैं। वृक्ष वनस्पतियों की 7,000 ऐसी प्रजातियां हैं जो केवल भारत में पाई जाती हैं, दुनिया में और कहीं नहीं। ये सभी वृक्ष वनस्पतियां और जीव जंतु प्रकृति के आंगन में पलते बढ़ते फलते फूलते कूदते नाचते हैं। इनकी विविधता प्रकृति को सौंदर्य से भर देती है, मनोरम बनाती है। प्रकृति और परमेश्वर इनकी विविधता में ही प्रसन्नता का अनुभव पाते हैं। इन भिन्नताओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करें, एक ही हरे रंग के पेड़ और पत्तियों का रंग क्या एक जैसा हरा है? हरे हरे प्रकार की अनेक पत्तियां हैं किंतु सबका हरा रंग कुछ न कुछ भिन्नता लिए हुए है। फूल के लाल रंग भी क्या एक जैसे हैं? लाली में भी भिन्नता है। पशु हों, पक्षी हों, पेड़ हों, पत्ते सब भिन्न हैं, फिर मनुष्य भिन्न क्यों नहीं हो सकता? उन मनुष्यों के विचार भिन्न क्यों नहीं हो सकते? एक कथा आती है कि गुरु में शिष्यों को समझाया, सब में ईश्वर का वास होता है, प्रत्येक चेतन प्राणी उसका रूप होता है। एक नवागत शिष्य ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। एक दिन वो गुरुकुल की गायें चराने ले गया। धेनु सेवा में रत उस शिष्य को आवाज सुनाई दी, भागो बचो किनारे हो जाओ। कुछ ग्रामीण चिल्ला रहे थे, उसने देखा सामने से एक बैल दौड़ता आ रहा था। उसे ध्यान आया, गुरु ने कहा है प्रत्येक चैतन्य ईश्वर का रूप होता है। वह अपने स्थान पर खड़ा रहा, उसे लगा ये ईश्वर का रूप है, इससे क्या भय।

बैल ने धक्का देकर उसे जमीन पर पटक दिया। वो बेहोश हो गया। मूर्छा से जागा तो अपने आप को गुरु आश्रम में पाया। साथ ही पंखा झल रहे थे। गुरुवर सामने खड़े थे। कराहते हुए उसने पूछा, हे देव, आपने तो कहा है प्रत्येक चैतन्य में ईश्वर का वास होता है, फिर ईश्वर ने मुझे मारा क्यों, बचाया क्यों नहीं? गुरु ने समझाते हुए कहा कि वो तुम्हें बचा तो रहा था, पर किसान के रूप में। तुमने बैल में तो ईश्वर का रूप देखा, पर उन किसानों में नहीं जो तुम्हें बचाने दौड़े चले आ रहे थे, तुमने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? हम सत्य के एक पक्ष को देखते हैं, इसलिए जड़ हो जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। संसार की भिन्नताओं से बना है यह हम जानते हैं। इन वैचारिक भिन्नताओं को उदारता पूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रत्येक दूसरी बात को समझे केवल अपने पर अड़े रहना न तो बुद्धिमानी है और ना

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख श्रीमती आशा दुबे का था, वाचक थे शैलेंद्र जोगी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन। स्वर कविता कृष्णमूर्ति और जगजीत सिंह का है।

रानी कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न है, उनका चित उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राजतिलक करने का निश्चय किया था, इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। स्वर कविता कृष्णमूर्ति और जगजीत सिंह का था। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र 6:45 हुए। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कृषि सामयिकी। इसमें आज किसान मैं सुने मत्स्य पालन तालाब की तैयारी के बारे में जानकारी।
1: भैया देखो, जैसे कि अपन सब जानते हैं कि अपन औरों के गांव में एक दो ग्रामीण निस्तारी और निजी तालाब पाए जाते हैं, जो उनको उपयोग अपन निस्तार और सिंचाई के कार्यों के साथ ही साथ मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन जैसे कार्यों में करते हैं। आज के समय में भूजल स्तर बनाए रखने के लाने तालाबों को बहुत महत्व बढ़ गया है और ऐसे हमें तालाबों को संरक्षित और सुरक्षित करके उत्पादन कार्यों में उनको अधिकतम उपयोग करने चाहिए। अब अपने गांव में 1 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक जल क्षेत्र वाले छोटे मौसमी या फिर बारहमासी तालाब बहुतायत से पाए जाते हैं, जो मछली पालन की दृष्टि से उपयुक्त माने जाते हैं। यदि इन्हें उचित रूप से तैयार करके इनमें उन्नत तकनीक से मछली पालन करो जाए तो मछली उत्पादन कई गुना बढ़ सकत है और अच्छी आमदनी भी प्राप्त करी जा सकत है। तो भैया मछली पालन के लाने तालाब की तैयारी कर वो तो बहुत ही जरूरी है। जौन प्रकार से हम वर्षा के पूर्व खेतों की तैयारी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही गर्मियों में तालाबों को जल स्तर कम होने पे सफाई और सुधार कार्य करके उन्हें मछली पालन के लाने तैयार करो जाते हैं। मछली पालन के लाने तालाबों में न्यूनतम 1.25 मीटर गहराई को जल स्तर आवश्यक है। पुराने तालाब जो तल में मिट्टी और गाद जमा हो जावे से सूख जाते हैं, ऐसे तालाबों की खुदाई, गहरीकरण और सफाई करके उन्हें मछली पालन के योग्य बनाओ जा सकत है। और तालाबों से निकाली गई जजन मिट्टी है एको उपयोग अपन खेतों में खाद के रूप में भी कर सकते हैं। तालाबों के बंधान जो पानी के कटाव से टूट फूट जाते हैं उनकी मरम्मत कर लेने चाहिए और उनमें अतिरिक्त वर्षा जल की सुरक्षित निकासी के लाने पक्को वेस्ट वियर बनाने चाहिए। वेस्ट वियर में पानी निकलवे के स्थान पे जाली लगावे की व्यवस्था जरूर कर लेने चाहिए ताकि बाढ़ के पानी के साथ तालाब में संचित मछलियां बाहर ना जा सकें। भैया जौन तालाब गर्मियों में सूखत नहीं है उनमें प्राकृतिक रूप से कई प्रकार की जलीय वनस्पतियां, हानिकारक मछलियां और कीड़ा उनमें पाए जाते हैं। मछली पालन के लाने जो तालाब की तैयारी के लाने इन सब की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मई जून माह में जल स्तर कम रहने पे आसानी से करी जा सकत है। जलीय वनस्पतियां पानी में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषण करने के साथ साथ तालाब की सतह को ढांक लेती हैं, जौन से उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। इसे तालाब से सभी प्रकार की जलीय वनस्पतियां निकाल देने चाहिए। यदि जलीय वनस्पतियां अधिकता में हो और हाथ से उनकी सफाई संभव न हो तो खरपतवार नाशक रसायनों को उपयोग भी करो जा सकत है। आजकल तालाबों में जलकुंभी या फिर ज्वालामुखी को प्रकोप भी देखो जा रहा है, तो इनके लाने रसायन को छिड़काव करके समाप्त करो जा सकत है। इस प्रकार से जल सतह के नीचे पाए जावे वाली शैवाल, हाइड्रिला, वेलेसनेरिया, सिरेटोफिल्लम जैसी जो वनस्पति हैं, इनके उन्मूलन के लाने अमोनिया 225 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करी जा सकत है। हाइड्रिला, नाजा जैसी जलमग्न वनस्पतियों की अधिकता होवे पे ग्रास कार्प नामक विदेशी प्रजाति की मछली छोड़वे पे वे उन्हें खा के नष्ट कर देती है। ऐसे भैया तालाबों में प्राकृतिक रूप से कई प्रकार की छोटी बड़ी हानिकारक और मांसाहारी मछलियां पाई जाती हैं, जो पाली जावे वाली मछलियों के लाने उपलब्ध भोजन या फिर उन मछलियों ही को खा के नष्ट कर देती हैं। ऐसे मछली पालन से पूर्व इनको उन्मूलन आवश्यक है। इन मछलियों को महीन फंदा को घसीटा जाल या फिर महाजाल चला के निकालो जा सकत है। यदि जाल चला के तालाबों में उपस्थित समस्त अनुपयोगी मछलियों को निकाल वो संभव ना हो तो तालाबों में महुआ की खली 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पीस के डाली जा सकत है, जौन के प्रभाव से समस्त प्रकार की जौन मछलियां हैं वे मर के जल स्तर पे आ जाती हैं, फिर उन्हें एकत्रित करके खावे और बेचवे के उपयोग में लाओ जा सकत है। तालाबों में उपयोग करी गई महुआ खली एक उत्तम प्रकार के खाद को काम कर रहे थे और इनमें 15-20 दिन बाद मछली बीज फिर छोड़ जा सका थे। तालाबों में मत्स्य बीज संचय से 15 दिन पहले उनमें जल की गुणवत्ता में सुधार के लाने 200 किलोग्राम से 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र के मान से बिना बुझो चूना डालो जात है और एक 2-4 दिन बाद आधार खाद के रूप में 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गीली गोबर की खाद 75 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डाल देने चाहिए। इसे कहा हुआ है कि तालाब में मछली बीज छोड़े जावे पे उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक भोजन मिल जात है।
0: कृषि सामयिकी में किसान भाई सुन रहे थे मत्स्य पालन तालाब की तैयारी के बारे में जानकारी। मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। इसमें आज सुनिएगा साइबर जागरूकता ही साइबर सुरक्षा, इस विषय पर श्री राज शर्मा से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे प्रशांत परमार। 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 9:00 लोक संगीत का कार्यक्रम होगा लोक रसधार, कलाकार होंगे रविशंकर श्रीवास्तव। 9:10 पर पीपल्स पद्मा श्री राममूर्ति श्रीधर, इनके बारे में आप सुनेंगे इनसे ली गई भेंटवार्ता, इसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। 9:25 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गजलें।

सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सती। विश्व दर्पण 10:10 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा साथ 10:20 पर। 11 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। हमारी दूसरी सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी। न्यूज

21 मिनट पर। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गम्मत, सुर्खियों में रात 8 बजे। 8:15 पर फिल्म संगीत। रात 9:30 पर अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती, और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से, और 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से हम अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलम् गुजरात टाइटन्स दलम् सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफ़् गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी लेंगे बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। इंदौर में आज 21 देशों के मंत्री और विशेषज्ञों के साथ ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का होगा आगाज। प्रदेश भर में आज लगेगी नेशनल लोक अदालत। बिजली पानी बिल के सरचार्ज पर 100% माफी समेत कई विवादों के निपटारे का मौका। और एक तरफ आंधी बारिश तो दूसरी ओर चिलचिलाती गर्मी। प्रदेश के 13 जिलों में आज तेज तूफान का अलर्ट। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में अधिकारी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पिछले दो दिनों में 97 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी की गई है। सरकार का कहना है कि 95% डिलीवरी अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए की जा रही है।
1: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। डॉ. यादव ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया।
2: शिक्षा नीति 2020 की बात कहें तो ये मध्यप्रदेश सरकार में सबसे पहले लागू हुई और ऐसे में सांदीपनि विद्यालय ये पूरे देश में मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया है कि वे दो दिन का दौरा बना करके आए, हमारे सभी स्कूली शिक्षा के सांदीपनि विद्यालय भी देखे और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर भारत सरकार के साथ मध्यप्रदेश सरकार मिलकर के काम करे।
0: प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें बिजली बिल, चलकर, संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। इस महाकुंभ में देशभर के वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और मीडिया विशेषज्ञ हिंदी पत्रकारिता के भविष्य पर मंथन कर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की संयुक्त पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में 92.1 के इंडेक्स स्कोर के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और धात्री माताओं को आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां देने में 95% तक कवरेज हासिल की गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस उपलब्धि का श्रेय आशा कार्यकर्ताओं, ANM और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को दिया। उज्जैन के लक्ष्मण बाग परिसर में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण शुरू हो गया है। इसे मध्य प्रदेश भवन विकास निगम करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करेगा। इसमें प्रशासनिक ब्लॉक, 12 अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, 50 सीटर कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर शीला दाहिमा और एसपी सुधीर अग्रवाल ने कुनो पहुंचकर हेलीपैड, चीता रिलीज साइट और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रदेश में अब तक 9,38,000 किसानों से 56,45,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी हो चुकी है। इसके लिए किसानों को 10,403 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। सरकार 2585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। भोपाल के सांदीपनी विद्यालय गोविंदपुरा में कक्षा पांचवी में पढ़ने वाले आराध्य पाराशर ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तरीय विजेता छात्र शामिल हुए थे। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। सलीमनाबाद के इमलिया गांव में करीब 3.35 लाख टन से ज्यादा सोने का अयस्क मिलने का अनुमान है, जो 50 साल की भूवैज्ञानिक खोज का नतीजा है। बड़ेरा और बचरबाड़ा में 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में तीन बड़े डोलोमाइट ब्लॉक भी माइनिंग कॉरपोरेशन को दिए गए हैं। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। पहले दिन खटिया इको सेंटर में वन्यजीव प्रबंधन, बाघ इंसान सह अस्तित्व और आधुनिक वन प्रबंधन पर चर्चा हुई। प्रदेश पुलिस ने बीते एक हफ्ते में अलग अलग जिलों में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 83 लाख रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ और वाहन जब्त किए हैं। प्रदेश के बीच से गुजर रही दो टर्फ लाइन और ऊपरी हिस्से में सक्रिय चक्रवाती हवाओं के चलते राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। कल 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहा। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री तक पहुंच गया है। आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142 रन बनाए, जिसके जवाब में केकेआर ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंदसौर में एनसीसी कैडेट्स को टीबी खत्म करने के अभियान में अपनी भूमिका के बारे में जागरूक किया गया। आगरमालवा जिले में नेशनल लोक अदालत के लिए 10 न्यायिक खंडपीठे बनाए गए हैं। झाबुआ में गर्मी के चलते पेयजल समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिला स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। सतना में नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 के खाली पार्षद पद पर उपचुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। डिंडौरी में कलेक्टर ने डैम घाट पर नाविकों की बैठक लेकर उन्हें सुरक्षा के जरूरी निर्देश दिए। धार में नगर पालिका परिसर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। गुना में मिलावटखोरी रोकने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य पदार्थों की लगातार जांच और सैंपलिंग की जा रही है। सागर में मकान गणना का काम धीमा पड़ने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 5 जनगणना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रतलाम में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम ने अरिहंत परिसर और ऑफिसर कॉलोनी के नालों की सफाई कराई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

श्रोताओ, स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। आज हम बात करेंगे गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती के बारे में। रविंद्र जयंती महान बंगाली कवि, विद्वान, उपन्यासकार, नाटककार, मानवतावादी दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का उत्सव है। गुरु रविंद्र जयंती ग्रेगोरियन पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष 7 मई को और बंगाली पंचांग के अनुसार वैशाख मास के 25वें दिन मनाई जाती है। एक समृद्ध बंगाली परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सर्वप्रसिद्ध हैं। उनकी कविताएं, लघु कथाएं, गीत जिन्हें रविंद्र संगीत कहा जाता है, नाटक और उपन्यास आज भी कला के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंसित और विश्लेषित हैं। विश्व साहित्य में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था, जिन्हें प्राप्त करने वाले वो पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जनगणमन लिखा। उन्होंने बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान भी लिखा। उनके अन्य कई उल्लेखनीय कार्यों में गीतांजलि, पोस्ट मास्टर, काबुलीवाला और नस्त निरह आदि शामिल हैं। मांझे मांझे तोबो, आकाश भरा, अमर हियार मांझे, पुरानो सही दिनेर कोठा, मेघेर कोले जैसे उनके गाने अभी भी बंगाल और भारत भर के उल्लेखनीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। प्रख्यात फिल्म निर्माता और अकादमी पुरस्कार विजेता सत्यजीत रे ने टैगोर की लघु कथाओं और उपन्यासों पर आधारित कुछ उल्लेखनीय फिल्में बनाई। टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में प्रसिद्ध विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। रविंद्रनाथ टैगोर कक्षा शिक्षण में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने प्रकृति के बीच कक्षाएं आयोजित करने का विचार प्रस्तुत किया, जो आज भी विश्वविद्यालय और उसके छात्रों द्वारा अपनाया जाता है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे ब्रिटिश शासन के आलोचक थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइट हुड की उपाधि का त्याग भी कर दिया था। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। स्कूलों, विश्वविद्यालयों, यहाँ तक कि स्थानीय इलाकों में भी टैगोर की रचनाओं से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रविंद्र संगीत पर आधारित नृत्य, नाटक, गीत और गायन इन कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है। विश्व भारती विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विदेशी छात्र भी इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। रविंद्रनाथ के जन्म स्थान जोरा संको ठाकुर बारी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कॉलेजों और स्कूलों में रविंद्रनाथ की रचनाओं का जश्न मनाने वाले कार्यक्रम आम हैं। आपको बच्चे कविताएं पढ़ते, गीत गाते या रविंद्रनाथ की साहित्यिक कृति पर आधारित नाटक का आयोजन करते हुए दिखाई देंगे। सामान्य समारोहों के अलावा बंगाल के अधिकांश घरों में सुबह से लेकर शाम तक रविंद्रनाथ के गीत बजाए जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर रचनाओं की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महज 16 वर्ष की आयु में नाटक लिखना शुरू किया। उनके भाई ज्योतिर्दरनाथ भी उनके साथ थे और उनका पहला नाटक वाल्मीकि प्रतिभा उन्होंने 20 वर्ष की आयु में लिखा था। विसर्जन जो 1890 में लिखा गया था उनके सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। अन्य नाटकों में चित्रांगदा, श्यामा, चांदलिका आदि शामिल हैं। 16 वर्ष की आयु में लघु कथाएं लिखना शुरू किया। उनकी पहली लघु कथा 1870 में प्रकाशित हुई। उन्होंने 1891 से 1895 के बीच अनेक कथाएं लिखी। 4 वर्षों की यह अवधि रविंद्रनाथ टैगोर की साधना काल के रूप में जानी जाती है। उनकी प्रसिद्ध लघु कथाओं में काबुलीवाला, क्षुद्रता पाषाण, अतिथि ये शामिल हैं।
उपन्यास की अगर बात करें तो निस्संदेह वे एक महान उपन्यासकार थे। उन्होंने 4 लघु उपन्यास और 8 उपन्यास लिखे। टैगोर की प्रसिद्ध रचनाओं में 4 ओढ़िया, चतुरंग, नौका डूबी, सुशेर कोबिता शामिल है। घरे बाहरे में बढ़ते आतंकवाद और स्वदेशी आंदोलन की धार्मिक भावना की निंदा की गई है। वहीं दूसरी ओर गोरा, जिनका उपन्यास है, उसमें भारतीय व्यक्तिवाद से जुड़े विवादास्पद मुद्दों को उठाया गया है। गीत की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में लगभग 2230 गीत लिखे। उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगणमन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला भी रचा। यहाँ तक कि श्रीलंका का राष्ट्रगान भी टैगोर की रचनाओं से प्रेरित है, जिनकी आज हम पूरे देश में जयंती मना रहे हैं।

0: ये उनका सुप्रसिद्ध गीत था एकला चलो रे, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। और श्रोताओं, अब सुनते हैं ये भेंट वार्ता। साइबर जागरूकता ही साइबर सुरक्षा। विशेषज्ञ हैं श्री राज शर्मा, आपसे बातचीत कर रहे हैं प्रशांत परमार।
1: नमस्कार दोस्तों, 21वीं सदी का ये जो दौर है, यदि हम इसे डिजिटल युग भी कहें तो गलत नहीं होगा। हम हर तरफ टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें अनेक सुविधाएं देती है, तो वहीं इससे जुड़े कुछ खतरे भी हैं, जिसमें कुछ अपराधी उसका उपयोग करके बिना आपसे सीधा संपर्क किए अपराध को अंजाम देते हैं, जिसे आसान भाषा में अगर कहा जाए तो उसे कहा जाता है साइबर क्राइम या साइबर अपराध। साइबर क्राइम क्या है, ये कैसे घटित होता है, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियों के लिए आज हमने आमंत्रित किया है साइबर एक्सपर्ट श्री राज शर्मा जी को। आप साइबर शिक्षा, साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद आपका।
1: सबसे पहले तो हमें ये बताइए राज जी, कि आज के इस डिजिटल दौर में साइबर क्राइम कितना बड़ा खतरा बन चुका है?
2: देखिए, आज इंडिया में हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम रिपोर्ट होता है। ये सिर्फ एक स्टैटिक नहीं है, ये आपके पड़ोसी की कहानी है, आपके रिश्तेदारों की कहानी है। क्योंकि आज डिजिटली स्मार्ट इंडिया बन रहा है, लोगों के पास UPI है, स्मार्टफोन्स हैं और इंटरनेट है, जो अब रूरल एरियाज में भी गांव तक लोगों के हाथ तक ये चीज़ पहुंच चुकी है। तो एक समय ऐसा आया है कि ये सिर्फ IT का टॉपिक नहीं बचा है, अब ये हर घर की ज़रूरत भी है साइबर सिक्योरिटी, और ये साइबर फ्रॉड एक आम प्रॉब्लम हो चुकी है।
1: तो ये बताइए, आम लोग जैसे किसान हैं या गृहणियां हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं या स्टूडेंट हैं, साइबर क्राइम के जाल में किस तरीके से फंसते हैं?
2: जी, किसी भी व्यक्ति के किसी भी जाल में फंसने का सबसे बड़ा कारण है डर और लालच। जो साइबर फ्रॉड करते हैं जो लोग, उनके दिमाग में बहुत सिंपल सा धारणा बनी हुई है कि वो सबसे पहले आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा जीतते हैं, फिर वो आपको दूसरी चीज, वो आपको एक डर दिखाएंगे या फिर वो आपको कोई लालच देंगे। जैसा कि आपने कहा, किसी गृहिणी के लिए, किसी किसान के लिए, अगर किसी किसान को कॉल आता है और वो कहता है कि आपको PM किसान निधि आपके अकाउंट में आ गई है, एक OTP आपके फोन में आया, आप दे दीजिए, किसान के मन में स्वाभाविक है लालच होगा। एक गृहिणी के लिए, अगर मेरे घर में अगर कॉल जाए मेरी माता जी को मेरी आवाज़ में कि एक OTP आया है या फिर कुछ और है, आप एक लिंक पे क्लिक कर दीजिए, मेरी आवाज़ में जा रहा है, तो साधारण रूप से मेरी माता जी भी, मेरे घर से भी वो OTP मिल जाएगा। तो ये डर और लालच, यही सबसे बड़ा कारण है, जो चाहे छात्र हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे किसान हो, सबसे बड़ा कारण डर और लालच है, जिसकी वजह से लोग इस साइबर फ्रॉड में फंसते हैं।
1: राज जी, आपने जैसे अभी बोला कि मेरी आवाज़ में मेरे घर पे फोन जाएगा, तो ये किस तरीके से अपराधी इस चीज को करते हैं?
2: जी देखिए, अब जो दौर चल रहा है, हम सब जानते हैं, चिरपरिचित हैं कि AI का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, जहां पे वॉइस क्लोनिंग होना बहुत आसान है।
1: इसका मतलब क्या होगा?
2: वॉइस क्लोनिंग का अर्थ ये हुआ कि आपकी आवाज एक बार सुन के कंप्यूटर जो है वो आपकी आवाज को क्लोन कर लेगा, उसका सेम प्रारूप बना लेगा और फिर उससे वो जो चाहे वो बुलवा सकते हैं।
1: यानी अगर मेरी वॉइस का, मेरी आवाज़ का सैंपल कंप्यूटर के पास है, तो उससे मेरी आवाज़ में पूरी एक बातचीत, पूरी एक स्पीच तैयार की जा सकती
2: है। जी बिल्कुल।
1: तो इस तरीके से साइबर फ्रॉड में उसका इस्तेमाल होता
2: जी
1: है। सबसे कॉमन साइबर फ्रॉड कौन से हैं और अभी वर्तमान समय में कौन से ज़्यादा प्रचलित हैं?
2: जी मैं अभी के दौर में देखते हुए मैं आपको कुछ बेसिक फ्रॉड्स बता दूं, तो जॉब ऑफर्स के फ्रॉड चल रहे हैं, लोन ऑफर के फ्रॉड चल रहे हैं, कंटिन्यू फेक कस्टमर केयर के नंबर के फ्रॉड चल रहे हैं, जिसमें फेक गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं कि बहुत सारी स्कीम्स के बारे में जानकारी कि ये स्कीम में लोन आपको मिल जाएगा, ये स्कीम में आपको स्कॉलरशिप है, या अभी जो इंटर्नशिप, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप को लेके एक स्कीम चल रही है, उस पर फ्रॉड लिंक्स बहुत सारी हैं। तो ये अभी करंट में बहुत सारी फ्रॉड लिंक्स चल रही हैं, आपको सेक्सटॉर्शन के फ्रॉड चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से सावधान रहने की, लोगों को जागरूक एवं सतर्क रहने की अति आवश्यकता है।
1: किसी एक साइबर फ्रॉड का जो हाल ही में घटित हुआ, उसका कुछ आप उदाहरण दे सकते हैं?
2: अभी हाल ही में एक फ्रॉड चल रहा है, जिसको मैं सबको जागरूक करना चाहूँगा कि वो एक किसी एक बैंक से आपको पॉइंट्स आते हैं कि यार ये आपके पॉइंट का आज आखिरी दिन है, आप ये पॉइंट ले लो, आपको 2000 का, 4000 रुपये का, 10000 रुपये का, 1 लाख रुपये का फ़ायदा होगा। लोगों को लगता है कि ये बैंक का, क्योंकि वेबसाइट भी बैंक की दिख रही है, सब कुछ बैंक जैसा है, तो लोग उस पर क्लिक करते हैं, लिंक में अपने नंबर, अपना आधार कार्ड, अपनी सारी चीजें, ओटीपी भी डाल देते हैं।
1: जी जी।
2: जो अभी फ्रॉड चल रहा है उसको छोड़ के एक फ्रॉड अभी हुआ है, बहुत ज्यादा चल रहा है, जो सेक्सटॉर्शन के मामले आप देखेंगे बढ़ रहे हैं।
1: इसमें क्या होता है?
2: इसमें मैं सबसे अनुरोध करूंगा, जीवन में एक चीज याद रखिएगा कि डिजिटल फुटप्रिंट, चाहे आपकी फोन में खींची हुई फोटो हो, आप कोई भी किसी भी जगह गए हो अपना फोन लेके, वो कभी नहीं मिटने वाला, आप ये मान के चलिए।
1: भले ही हम अपने मोबाइल से उसे डिलीट कर दें,
2: आप मोबाइल से उसको 4 बार 5 बार डिलीट भी करेंगे तो उसकी रिकवरी के चांसेस बने हुए हैं।
1: जी जी जी।
2: तो मैं सबसे कहूंगा कि आपके वीडियो कॉल्स के समय पे, किसी व्यक्ति से मिलते समय जब भी आप कोई फोटो लें, कोई वीडियो बनाएं, तो कृपया करके उसकी सतर्कता, उसकी सावधानी और उसकी सुरक्षा पे जरूर ध्यान दें। ये वीडियोस आगे चल के किसी भी गलत चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, किसी भी गलत काम के लिए यूज़ हो सकते हैं, और उससे आपको डराया धमकाया जा सकता है, उसी को हम सेक्सटॉर्शन बोलते हैं। तो मेरी सबसे अनुरोध रहेगा कि इसके लिए बहुत सतर्क रहें। जैसा हम सब जानते हैं सेल्फी का दौर है, हम व्यूज पे फोकस है कि हमारे कितने व्यूज आए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे। आप देखेंगे कि ये जो आपकी व्यूज की सोशल मीडिया पे होड़ है, ये प्रॉब्लम आपके लिए कर रही है कि आप अपनी फोटोज खुद ही अपलोड कर रहे हैं,
1: और उसमें भी जो आपकी निजी फोटोग्राफ्स हैं,
2: जो आपके निजी फोटोग्राफ्स हैं, आप उसको खुद अपलोड कर रहे हैं, और सामने जो भी फ्रॉडस्टर है, जो भी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है, उसको आप पूरा मौका दे रहे हैं कि वो आपके दिमाग के साथ पूर्णता खेल सके।
1: जी जी जी जी। तो इस तरीके से उनको ये फोटोग्राफ्स जो हैं वो प्राप्त,
2: फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं। एआई के इतनी सारी चीजें आ गई हैं एआई में, वो आपके फोटोग्राफ्स को मॉर्फ कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, वो जिस भी रूप में, अच्छे बुरे जिस भी रूप में देखना चाहें, दिखाना चाहें, वो दिखा देते हैं, और उस समय पे आपको लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
1: जी जी जी।
2: इस तरीके से ये ऐसे फ्रॉड होते हैं।
1: अगला प्रश्न मेरा इसी से जुड़ा हुआ है राज जी, की सोशल मीडिया की जब आपने बात कही, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले जो युवा हैं उनको किस तरीके का खतरा होता है और वो इससे कैसे बच सकते हैं?
2: कभी भी देखिए, युवा अगर फंसता है तो दो ही चीजों में, पहला सेक्सटॉर्शन और दूसरा आइडेंटिटी थेफ्ट। अब सेक्सटॉर्शन के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं।
1: जी जी।
2: और आइडेंटिटी थेफ्ट, एक साधारण रूप से अगर फेक इंटर्नशिप, फेक जॉब, लोन के ये फॉर्म्स और बहुत सारी ऐसी फेक एप्स जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आप इस पे आप अपनी आइडेंटिटी डाल दीजिए, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्यूज बढ़ जाएंगे। अभी एक बहुत ज़्यादा प्रचलित केस है, किसी एक पर्टिकुलर माध्यम पे आप अपने किसी का भी नंबर दीजिए, उसके इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया आईडी हैक हो जाएगी और उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसके लिए जो युवा हैं बहुत आतुर होके किसी का भी नंबर डाल देते हैं, उससे उस व्यक्ति की आइडेंटिटी तो जाती है, आपकी भी आइडेंटिटी पूरी चली गई है। आपका पूरा फोन, आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपके फोन में दिए हुए जितनी फोटोज, कॉन्टेक्ट, सब कुछ एक अलग आदमी के हाथ में चला गया है। तो मैं सारे युवाओं से कहूँगा कि अगर आपको अपना डिजिटली सुरक्षित रहना है तो सबसे पहला काम है अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को छुपाएं। मैं पर्टिकुलरली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बोलूंगा कि व्हाट्सएप पे, आप इंस्टाग्राम पे, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रूप से करें, ताकि आपकी आइडेंटिटी, आपकी फोटोज, आपके डिजिटल फुटप्रिंट सुरक्षित रहें।
1: जी जी। क्या ऐसा कहना सही होगा, पढ़े लिखे लोग इसमें ज़्यादा सुरक्षित होंगे और जो ज़्यादा अवेयर नहीं है इन सारी चीज़ों से वो ज़्यादा असुरक्षित हैं?
2: जी नहीं, मेरा मानना बिल्कुल थोड़ा सा विपरीत है।
1: जी।
2: आप इतने समय से देखिए, क्या कभी आपने सुना है कि किसी के साथ 780 रुपये का फ्रॉड हुआ, कि जिसकी बड़ी रिपोर्ट हुई हो? आप देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसे केस हुए या फिर अन्य भी फ्रॉड हुए, तो जो ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं इनको पता है कि वो आम आदमी नहीं है, वो पढ़ा लिखा आदमी को नहीं जाते हो, पढ़े लिखे लोगों के साथ ही अधिकतर फ्रॉड हुए हैं आज तक। जिनके पास पैसा बहुत है, उनकी आय ज्यादा है, उनकी आइडेंटिटी सोशल मीडिया से लेके आम जनता के बीच में उनका नाम है, उनके साथ ही ज्यादातर फ्रॉड हुए हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे, अनपढ़ लोगों के साथ ऐसा कोई माध्यम नहीं।
1: यानी कि हर एक व्यक्ति इसकी जद में आता है और पढ़े लिखे लोग ज्यादा शिकार हो रहे हैं।
2: बिल्कुल
1: जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन सारी घटनाओं के बीच में सरकार की क्या भूमिका है, किस तरीके से वो साइबर क्राइम को रोकने के लिए कदम उठा रही है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
2: हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए, कि अगर कभी किसी के भी साथ अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है तो साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अवेलेबल है, दूसरा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल भी अवेलेबल है, तीसरा साइबर क्राइम को लेके एक अलग से विशेष पुलिस बल की भी सहायता दी गई है जिससे अधिक से अधिक इन मामलों का निवारण किया जा सके।
1: जी, एक बार नंबर और वेबसाइट के बारे में फिर से बता दीजिए।
2: जी, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है जिसपे आप जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, दूसरा नंबर है 1930-1930, इस नंबर पे आप जब भी फ्रॉड होता है या किसी के साथ होता है आप उस नंबर पे जाके उस कंप्लेंट अपनी दर्ज करा सकते हैं।
1: जी, एक आम नागरिक अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकता है, किस तरीके का व्यवहार वो कर सकता है डिजिटल स्पेस में, इसके बारे में व्यवहारिक कोई सुझाव दीजिए।
2: जी, कुछ सिंपल रूल है, OTP किसी को मत दें, हर किसी लिंक पे क्लिक मत करें। अभी इतना समझाया जाता है लोगों को, सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, हम लोग भी अपने प्रयास करते हैं साइबर सुरक्षा को लेके। अननोन ऐप उनको डाउनलोड मत करें, जिन पे .apk आता है उनको डाउनलोड ना करें, उनको उन फाइल्स को ना खोलें। सोशल मीडिया पर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, अपना एड्रेस, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें मत दें। अपनी फोटोज हर जगह पे अपलोड ना करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर करके रखें। ये बेसिक जानकारी सब तक होनी चाहिए और इसको लेके सबको सतर्क होना चाहिए। पहले क्या होता था कि साइबर फ्रॉड सिर्फ लोगों के माध्यम से होता था, अब उसमें AI भी बहुत बड़ा रूप निभा रहा है। तो मेरी सबसे कोशिश ये रहेगी, डीप फेक कॉल्स हैं, डीप फेक वीडियोस हैं, जिससे आपको सुरक्षित रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता।
1: जी राज जी, आप खुद एक साइबर एक्सपर्ट हैं, तो आप अवेयरनेस के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: जी, हम निरंतर प्रयासरत हैं कि कहीं पे भी ऐसी कोई भी घटना ना हो जिससे उस व्यक्ति की मेहनत का अर्जित किया हुआ पैसा, उसकी आइडेंटिटी, कोई भी ऐसा नुकसान हो। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जैसे अभी आने वाले समय में हम एक बड़ा साइबर अवेयरनेस कैंपेन, साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव कर रहे हैं जबलपुर में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री अमित दुबे जी नेशनल साइबर सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो आ रहे हैं जबलपुर, जिसमें हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कोशिश की है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पहुँचे।
1: जी राज जी, हम देख रहे हैं कि साइबर अपराध जहाँ पे है तो सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है, जैसा कि आपने बताया आप भी बहुत सारे अवेयरनेस के कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या इसमें करियर बनाने के लिए भी कोई संभावना है, युवा इसमें कहीं अपना करियर बना सकते हैं?
2: जी, जैसे जैसे साइबर अपराध बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उतनी ही लोगों की आवश्यकता है जो साइबर जगत में साइबर सिक्योरिटी पे काम करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। आज साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी 1,00,000 करोड़ रुपए का मार्केट है, इसमें इतनी ही अपार संभावनाएं हैं जितनी आप साधारण रूप से पुलिस विभाग में देखते हैं, किसी अन्य विभाग में देखते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में देखते हैं, आर्मी में देखते हैं, इतनी ही संभावनाएं साइबर सिक्योरिटी पे भी। इस पे आज बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आई हुई हैं और मैं युवाओं से कहूँगा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है उनके लिए जहाँ पे उनका एक अच्छा, सुनहरा और सुरक्षित भविष्य होगा।
1: जी जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं से और क्या कहना चाहेंगे आप?
2: डिजिटल सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सतर्कता आपकी खुद की है, खुद की सुरक्षा के लिए, डिजिटल सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अपने फ़ोन को, अपने डिजिटल जितने भी माध्यम हैं उनको सिक्योर रखिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए, और कुछ पासवर्ड्स जो किसी को भी ना बताएं, कुछ यूनिक पासवर्ड बनाएं, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: राज शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा के बारे में आपने इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। जय
1: नमस्कार।

0: साइबर जागरूकता ही साइबर सुरक्षा। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। विशेषज्ञ थे श्री राज शर्मा, आपसे बातचीत कर रहे थे प्रशांत परमार।
1: सुनो सुनो, अपने कानों में तेल डालकर सुनो कि बंदा अपने प्यारों को आदाब बजा लाता है, अपनी अम्मा और अपनी जोरों के सर पे हाथ रख के अपनी कसम दोहराता है।
2: क्या?
1: ये

0: लूट गई चोर बाजारी, अरे लूट गई दौलत सारी। सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे।

0: टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे। जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

0: बांट के खाएंगे, अगर करेंगे झगड़ा प्यारे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
1: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
0: नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
2: किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में अनजान का लिखा ये गीत आपने सुना। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और फिल्म थी खून पसीना।

श्रोताओं, आज 9 मई आज एक विशेष खास दिन है आज का, क्योंकि आज मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती है। वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में उन्हें जाना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वीर योद्धा महाराणा प्रताप की आज जयंती है और महाराणा प्रताप भारत के उन महान योद्धाओं में गिने जाते हैं जिनका नाम आज भी वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए लिया जाता है। उन्होंने कभी भी अपने सम्मान और मातृभूमि के साथ समझौता नहीं किया। यही वजह है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में लोग उन्हें गर्व और सम्मान के साथ याद करते हैं। हर साल महाराणा प्रताप जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ था। ये मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था। बचपन से ही महाराणा प्रताप बेहद साहसी और निडर थे। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। पिता की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उस समय मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाने में लगा हुआ था। अकबर चाहता था कि सभी राजा उसकी अधीनता स्वीकार करें लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लगातार लड़ते रहे। महाराणा प्रताप का नाम सबसे ज़्यादा हल्दीघाटी युद्ध के लिए माना जाता है। ये युद्ध 1576 में मुगलों और मेवाड़ के बीच लड़ा गया था। कहा जाता है कि इस लड़ाई में महाराणा प्रताप ने अद्भुत साहस दिखाया था। उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी इस युद्ध में उनके साथ अंत तक डटा रहा। चेतक की बहादुरी की कहानियाँ आज भी लोगों को भावुक कर देती है। महाराणा प्रताप ने जंगलों और पहाड़ों में रहकर भी अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कठिन जीवन बिताया लेकिन अपने राज्य और लोगों की आज़ादी के लिए संघर्ष जारी रखा। यही कारण है कि उन्हें आज भी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। महाराणा प्रताप जयंती के दिन लोग उनकी वीरता और त्याग को याद करते हैं। राजस्थान में इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और उनकी जो प्रेरणादायक कहानियां हैं बच्चों को सुनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जीवन आज की नई पीढ़ी को ये सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए डटे रहना चाहिए। उनकी बहादुरी और देश प्रेम हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा।

सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी तानाजी द अनसंग वॉरियर्स। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक, माफ कीजिए, समाचार प्रभात। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में

0: पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.news

0: ऑन ए आई आर डॉट जी ओ वी डॉट आई एन और हमारे न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपये गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त।

अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: appointed new Chief of Defence Staff. IMD forecasts heavy rainfall over Keralam, South Interior Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry during next 2 days. And in football, India scripts history by qualifying for AFC Under-17 Women's Asian Cup quarter-finals for the first time. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुरमई सवेरा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और बच्चे जो है वो घर पर जिद कर रहे हैं कि भाई हमें घूमने जाना है, या कई बच्चे जो हैं वो घूमने निकल भी गए हैं। वाकई श्रोताओं, घूमने जाना किसे पसंद नहीं होता। बड़ों को भी घूमना पसंद होता है, बच्चों को भी घूमना पसंद होता है, और घूमने से, नई नई जगहों को देखने से, नए नए लोगों से मिलने से जो है वो हमारा दिल भी खुश होता है। और जो हमारा जब दिल खुश होता है, हम प्रसन्न होते हैं, तो हमारी जो है वो खुशियाँ जो हैं वो डबल हो जाती हैं। तो क्यों ना इन गर्मियों में नई नई जगह घूमिया जाए और बच्चों को जो है वो लेकर नई नई जगहों पर लेकर जाया जाए और उन्हें नई नई जगहों की जानकारी भी दी जाए। तो इससे बच्चों की जानकारियाँ भी बढ़ेंगी और उन्हें मज़ा भी आएगा, और इसके साथ साथ जो बड़े हैं वो भी जो हैं वो घूमने का पूरा आनंद ले सकते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, तो हम बात कर रहे थे कि गर्मियों की छुट्टी जो है वो वाकई कितनी जो है उन छुट्टियों का इंतज़ार रहता है। गर्मियों की छुट्टियों का जो है वो छात्रों के लिए जो है वो साल का सबसे जो है वो इंतज़ार वाला वक्त होता है। ये सुकून से छुट्टी का समय है और आराम करने और तरोताज़ा होने का एक जो है वो अवसर कह सकते हैं उसको है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान जो है वो परिवार के साथ अच्छा समय बिताया जा सकता है। पहाड़ों की और कहीं भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ की यात्राएं की जा सकती हैं। तो कह सकते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो सभी के लिए सबसे इंतज़ार वाला वक्त होता है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी भोपाल के उर्दू नशरियात के तहत समाप्त फरमाएं सोमवार सुबह 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम आईना।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
3: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुनिए स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर रोचक जानकारियों का साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण प्रति सोमवार 1:00 PM।
7: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, जब भी हम कहीं सफर पर निकलते हैं तो

सबसे ज़्यादा जो है वो हमें खुशी होती है कि हम सफ़र किस चीज़ से कर रहे हैं। गाड़ियों से सफ़र, प्लेन से सफ़र बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो सफ़र का आनंद है वो आता है ट्रेन से। जी हाँ, बच्चों को तो अक्सर जो है वो रेल का सफ़र बहुत भाता है। तो हमने भी बचपन में काफ़ी रेल के सफ़र किए हैं और आपने भी किए होंगे, तो वाकई आता है ना आनंद रेल के सफ़र में। तो बच्चे जो हैं वो हमेशा कहीं जाने की जब ज़िद करते हैं या कहीं हम जाते हैं घूमने, तो सबसे पहले उनका यही रहता है कि किस चीज़ से जा रहे हैं हम। तो भाई वो ये बोलते हैं बच्चे कि हमें तो रेलगाड़ी से यानी ट्रेन से ही जाना है, सफ़र करना है। तो वाकई श्रोताओं, ट्रेन का सफ़र जो है वो सभी को बहुत अच्छा लगता है।

जी हाँ श्रोताओं, ट्रेन से सफ़र करने का आनंद ही कुछ और होता है और बच्चे तो चाहते ही हैं कि घूमने फिरने कब जाएं। इस दौरान बच्चों को हमें जो है वो ऐसी जगहों पर ले जाना चाहिए जहां उनका जो है वो दिमागी विकास भी हो, जैसे कि कुछ ऐसी हमारी धरोहरें हैं हमारे देश की जो हम बच्चों को दिखा सकते हैं, उन्हें उसके बारे में बता सकते हैं, अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बच्चों को जो है वो उनको उनको दिखा के जो है वो चीज़ें वो सीख सकते हैं, और अपने जो घर के जैसे दादा दादी हैं नाना नानी हैं उनके यहाँ भी ले जाकर बच्चों को जो है उनसे मिलवा सकते हैं, उनकी जो बातें हैं वो बच्चे सुनकर बहुत कुछ सीखते हैं और आपस में जो है वो प्यार से आगे रहना भी सीखते हैं। तो इस तरह से जो है वो गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं वो बच्चों को हम ले

0: इतना नहीं।
1: अरे

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमय सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टी जो है वो कैसे बिताई जाए। तो गर्मी का जो मौसम है वो नई जगहों पर सैर करने का होता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो बच्चों की छुट्टियां हुई होती हैं या आउटडोर खेलों में बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। गर्मी का मौसम जो है वो आम, ठंडे पेय और आइसक्रीम का आनंद लेने का भी कह सकते हैं।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत, इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की गाई गजलें।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं गुलाम अली की गई गजलें। अब पेश खिदमत है अहमद फराज का ये कलाम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे होला मली की गई चंद गजलें। मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। सिंगरौली में अब बच्चे सिर्फ किताबों में ही आसमान नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। कलेक्टर गौरव बैनल की पहल पर उत्कृष्ट विद्यालय बैढ़न में 10 इंच का प्रोफेशनल टेलीस्कोप लगाया गया है। इस दूरबीन के जरिए छात्र अब चांद के गड्ढों, शनि ग्रह के छल्लों और गहरे आकाशीय पिंडों को करीब से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने किया। वहीं विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी सिंगरौली लगातार आगे बढ़ रहा है। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के निर्देशन में खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तय लक्ष्य के मुकाबले बड़ी राजस्व वसूली की है। जिले ने करीब 4,833 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सामने 4,681 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है। खनिज संपदा के साथ साथ वन संपदा को लेकर भी जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। वन मंडल जिला यूनियन सिंगरौली ने वर्ष 2026 के तेंदूपत्ता संग्रहण की सभी तैयारियां पूरी करनी हैं। इस साल जिले के लिए 1,77,000 से ज्यादा मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 400 रुपए प्रति सैकड़ा निर्धारित की गई है जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा। इधर जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सिंगरौली को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। वर्ष

0: 2020 के आईपीएस अधिकारी शियाज के एम ने जिले के एसपी का पद संभाल लिया है। इससे पहले वे बालाघाट के हॉक फोर्स में पदस्थ थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर समन्वय पर जोर दिया। नई पुलिस टीम के सक्रिय होते ही अपराधियों पर कार्रवाई भी तेज हो गई है। बरगवां थाना पुलिस ने हाल ही में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने एक युवक के साथ मारपीट, नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पर्स लूट लिया था। वहीं प्रशासन अवैध खनन और भंडारण पर भी लगातार सख्ती बरत रहा है। खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम मझौना में कार्रवाई करते हुए निजी जमीन पर अवैध रूप से भंडारित करीब 174 घन मीटर लावारिस रेत जब्त की है। इधर सिंगरौली को रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। अब सिंगरौली सीधे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से रेल सेवा के जरिए जुड़ गया है। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने सिंगरौली रेलवे स्टेशन से साप्ताहिक धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। औद्योगिक क्षेत्र में भी गतिविधियां लगातार जारी हैं। एनटीपीसी विंध्याचल ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। परियोजना और टाउनशिप के करीब 20 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान श्रमिक अधिकारों, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुए। अलग अलग स्थानों पर सेफ्टी टॉक और वेलनेस कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इसी क्रम में एनटीपीसी विंध्याचल में फायर सर्विस वीक भी मनाया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक बॉम्बे डॉकयार्ड अग्निकांड में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को याद करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ी पहल की गई है। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल ने वृहद वृक्षारोपण के लिए एमपीआरवीवीएन के साथ एमओयू किया है। एनसीएल ने वर्ष 2026-27 में प्रदेश के खदान क्षेत्रों की 208 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर करीब 4,70,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अब बात जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने की। जिले में खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी है। ये शिविर 4 जून 2026 तक चलेंगे। जिले के अलग अलग विकासखंडों और जिला मुख्यालय में फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल, कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैढ़न के राजमाता चून कुमारी स्टेडियम में फुटबॉल और क्रिकेट शिविर लगाए गए हैं, जबकि खो खो का प्रशिक्षण काइट राइज पब्लिक स्कूल और बास्केटबॉल का प्रशिक्षण कन्या महाविद्यालय बैढ़न में दिया जा रहा है। अंत में बात उन लोगों की जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी जिंदगी को बदलने का काम किया है। 71 वर्षीय लालमन को आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत आयुष्मान कार्ड मिला है, जिससे उन्हें अब हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं छोटे व्यापारी शिव नारायण को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण मिला है, जिससे वे अपना काम और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह रीता कुशवाहा ने भी पीएम स्वनिधि की मदद से अपनी बंद दुकान को फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई शक्ति वंदन अभियान के तहत महिला किसान सत्य कुमारी जायसवाल के नेतृत्व में महिलाएं मिलेट उत्पादन और मार्केटिंग से आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
2: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है वंदे मातरम गौरव गान की 1.5 सदी।

150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, एक गीत, एक प्रेरणा, एक राष्ट्र की अस्मिता वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम की लौ को प्रज्वलित किया, जन जन के हृदय में स्वाधीनता की अलग जगाई। आज भी ये गीत हर भारतीय के मन में देशभक्ति की ज्वाला को

प्रज्वलित करता है, एकता और अखंडता का संदेश देता है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसने 150 वर्षों से अधिक समय से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रभक्त की भावना को प्रज्वलित किया है। नवंबर 2025 में इस गौरवशाली गीत के रचे जाने के 150 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को इस कालजयी गीत की रचना की थी, जिसे बाद में 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो 1896 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक और प्रेरणा का मुख्य स्रोत बन गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया, जिसे जन गण मन के बराबर सम्मान प्राप्त है। ये गीत संस्कृत में रचित है और इसमें भारत माता की वंदना की गई है। इसमें मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, जल फलों और शीतल पवन के समृद्ध रूप में वर्णित किया गया है। हम नमन करते हैं।

गौरवगान की डेढ़ सदी, वंदे मातरम। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम मीडियम वेव पर आकाशवाणी का, ये जबलपुर केंद्र है। 10:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विश्व दर्पण, इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना आज से भारत दौरे पर। अमेरिका ने ईरान को हथियार बनाने में सहयोग के आरोप में 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना आज से 15 मई तक भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे। श्री मैकेना कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमवार को वे भारतीय खाद्य आयातक मंच और एसोचैम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मंगलवार को श्री मैकेना वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और CII द्वारा आयोजित व्यापार शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब श्री पीयूष गोयल ने 30 जनवरी को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 4 वर्षों में विकसित देशों के साथ 8 मुक्त व्यापार समझौते FTA किए हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति GDP भारत की तुलना में काफी अधिक है। ग्रेटर नोएडा में ICAI वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंट्स को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि FTA पूरे यूरोप को कवर करते हैं, जिसमें 27 देशों का यूरोपीय संघ और 4 देशों का EFTA शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही चिली के साथ एक FTA करने वाला है, जिससे देश के विकास और औद्योगिक जरूरतों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने

0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि भारतीय सेना के एक अत्यंत अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वे पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर सुश्री सीतारामन ने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया अध्याय है। इस अवसर पर भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन भी उपस्थित थे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने कोस्टा रिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कोस्टा रिका के राष्ट्रपति और सरकार को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी और जनसेवा में सफलता की कामना की। श्रीलंका के कंके संथुराई और भारत के नागपट्टिनम के बीच चलने वाली एक यात्री नौका शुक्रवार रात इंजन खराब होने के कारण कई घंटों तक समुद्र में फंसी रही। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नौका दोपहर लगभग 2:30 बजे कंके संथुराई से रवाना हुई थी और उसे लगभग 4 घंटे में नागपट्टिनम पहुंचना था। 144 यात्रियों को ले जा रही ये नौका के इंजन में नागपट्टिनम तट से लगभग 2 समुद्री मील दूर कल्लर के पास खराबी आ गई। भारतीय अधिकारियों और स्थानीय मछुआरों को नौका की के लिए भेजा गया, जिसके बाद उसे धीरे धीरे बंदरगाह पर वापस लाया गया। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत सहित दक्षिण और मध्य एशिया के देशों को विश्व स्तरीय तकनीक तक पहुंच देना चाहता है ताकि वे विरोधी देशों पर निर्भर न रहे। अमेरिकी विदेश विभाग की उप सहायक सचिव बेथनी मॉरिसन ने अमेरिका भारत एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों फोरम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के तेजी से विकास के साथ स्पष्ट नियम और सुरक्षा जरूरी है। तकनीक का उपयोग खुलेपन, सुरक्षा और आपसी तालमेल के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि एआई क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ रही है और भारत अमेरिका सहयोग से दोनों देशों को वास्तविक फायदे मिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे संघर्ष में अमेरिका ने 10 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर ईरान को घेरने की नई कोशिश की है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के साथ संघर्ष के बाद ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है। यहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस वजह से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तीव्र बढ़ोतरी देखी जा रही है। ईरान बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाने की क्षमता रखता है और हर महीने लगभग 10,000 ड्रोन बना सकता है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव हुर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य हुर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरेह बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। चर्चा में सीमाओं का निर्धारण, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने तथा लेबनान में सरकार की पूर्ण संप्रभुता बहाल करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। दुनिया में हंता वायरस के 2 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं, एक स्पेन में और दूसरा दक्षिण अटलांटिक महासागर के दूरस्थ द्वीप ट्रिस्टन दा कुन्हा में। ये मामले एक लग्जरी क्रूज जहाज से शुरू हुए संक्रमण से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब तक इस वायरस से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि आम लोगों के लिए जोखिम कम है और ये वायरस आसानी से नहीं फैलता। संगठन के अनुसार जहाज पर मिले कुछ मामले हंता वायरस के इंडीज स्ट्रेन से जुड़े हैं, जो इस वायरस का एक ऐसा प्रकार है जो इंसानों के बीच फैल सकता है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के फोंग यू झू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के कोंग चियांग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिराट का सामना करेंगे। फुटबॉल में भारत ने कल चीन में लेबनान को 4-0 से हराकर एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारत के लिए प्रतिका बम्मन ने 2, अलवा देवी सिंजाम और जोया ने 1-1 गोल किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना आज से भारत दौरे पर। अमेरिका ने ईरान को हथियार बनाने में सहयोग के आरोप में 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए स्वामी फिल्म का नगमा। गीत लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत राजेश रोशन का है, फिल्म है स्वामी और गायक है यशुदास। इस गीत को सुनना चाहते हैं शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल उमेश, सरोज आरती रेखा, रितिका रिचा, स्वीटी सागर, मगर लोड छत्तीसगढ़ से पुन्नूराम साहू, राज तेजस्वरी साहू, राजश्री राजवीर साहू, महाराजा रेडियो श्रोता संखंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य, राजपुर से घिस्सू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे।

श्रोता, आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आनंद का ये नगमा। बोल गुलजार के हैं, तर्ज बनाई है सलील चौधरी ने। फरमाइश आप सबके, बिलहरी बड़खेरा से संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, इंदल पटेल, नीलेश पटेल, भैया ठाकुर, गोलू सोनी, लल्लन वर्मन, विसरता कोल, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया, बोरखेड़ा, पित्रामल, जिला उज्जैन से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूडत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मूडत। सुनिए इनकी पसंद पर ये गीत।

एक ही रास्ता, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हेमंत कुमार, गायक हैं हेमंत कुमार। इस गीत को सुनना चाहते हैं सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, प्रमोद राही, सिद्धार्थ राही, सृष्टि राही, पिंडरी मंडला से सुमत कुमार जैन, मीना जैन, कबीर जैन, वरुण जैन, वान्या जैन, बेमेतरा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, जतुका किशनपुर से मोहम्मद वकील, फिरोज नाज, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में श्रोताओं सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम असली नकली। सुनना चाहते हैं डोंगरगांव और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजबीय। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, झाविंद्र कुमार वर्मा। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम आशीष विश्वकर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं यंग रेडियो लिसनर्स खोवा मंडी जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया।

0: अब अगर हमसे
1: श्रोताओं, आप सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत। बोल साहिर लुधियानवी के हैं, संगीत मदन मोहन और जयदेव का, फिल्म है लैला मजनू। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जितू का, किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम, नूरजहां, डब्ल्यू अकरम, वली अकरम, उल्लाह अकरम, राजनांद गांव से याकूब, आसमा यूसुफ, इमरान, वैष्णो कॉलोनी सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाखिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, शादाब खत्री।

0: एक महल हो सपनों का, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी, गणेश मिस्त्री, बंडा बेलई से लक्ष्मण रैकवार, हल्ले बिनीता लल्लू, ऋषि रैकवार। प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना, पूजा, आरती, सुनीता देवी, ये श्रोता हमारे पत्र भेजे हैं गड़िया मौजे उस्तु से।
1: एक

श्रोताओं, अब सुनिए शमशाद बेगम की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल तर्ज बनाई है नौशाद ने। फिल्म है दुलारी। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही महराज जहां, जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार रामचंद्र, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और उनके परिवार के सदस्य।

सुनना चाहते हैं बेरडी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बाशेरे, पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, चंद्र प्रभा वाडोदे, नर्मदा कॉलोनी मंडला से।

0: श्रोताओं, हमें खेद है, गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा सके समय अभाव के कारण। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, 10:58 हुए हैं। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, चलकर, संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनू नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में 92.1 के इंडेक्स स्कोर के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, किशोरियां और धात्री माताओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां देने में 95% तक कवरेज हासिल की है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है और प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: भोर की अंगड़ाई से सांझ की दियाबाती तक, या फिर सुबह की पहली किरण के बुलावे पर आसमान पर जागते दिन की अनछुई लाली हो, कुछ इस तरह आकाशवाणी के श्रोताओं के दिलों पर राज करती आई है हमारी आकाशवाणी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपने 90 सालों के गौरवशाली वर्षों को। हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार साहब। हेलो सर।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार। आज का क्या विषय है?
0: आज का हमारा विषय है आकाशवाणी, जो कि अपने गौरवशाली 90 वर्षों को बहुत ही खूबसूरती के साथ में आपके सहयोग से, आपके साथ के साथ मनाती आई है। और आज आकाशवाणी के लग

0: पूरे देश के तमाम केंद्रों पर वॉकेथॉन या कि मैराथन का आयोजन किया गया है। इस विषय पर आपके क्या विचार हो सकते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: हमारे विचार ये है सर कि ये आकाशवाणी है ना, हर इंसान को शांति पहुंचाती है।
0: अच्छा,
1: हाँ, इससे क्या है, कोई ना भी हो, अपना रेडियो चल रहा है तो अपना दिल भरा भरा रहता है, कोई दुख नहीं, कोई वो नहीं।
0: जी
1: रेडियो सुनते रहते तो सारे गम दूर हो जाते हैं।
0: तो आकाशवाणी ने एक तरीके से आपके सुख दुख के पलों में अपना हाथ बटाया है,
1: जी
0: जब
1: सर,
0: आप अकेले हुए हैं, जब आप तन्हा हुए हैं,
1: हाँ
0: उसने अपना कांधा आगे किया है, अपने हाथों को आगे बढ़ाया है
1: जी सर,
0: आपकी तन्हाई को दूर करने में,
1: हाँ
0: आपके एकाकीपन को बांटने में आकाशवाणी आपकी साथी बनी है।
1: जी सर,
0: जी चलिए, तो इसी खुशी के मौके पर एक
1: नमस्ते।
0: गीत आपके नाम करते हैं, आप इस गीत को सुनिए और खो जाइए आकाशवाणी के इन खूबसूरत पलों में।
1: जी
0: नमस्कार।
1: सर।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार
0: हाँ
1: सर।
0: जी नमस्कार जी।
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी राजू जी, आगरा से
1: जी
0: आपने
1: सर,
0: फ़ोन लगाया है। क्या हाल चाल है इन दिनों आगरे के?
1: आगरा में हालचाल ठीक है। मौसम आजकल बहुत सुहाना हो रखा है। बारिश सुबह भी यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, और पिछले कहा जाए तो लगभग अप्रैल महीना पूरा ही बारिश और आंधी में गया। मई का महीना भी लगभग ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि
0: अच्छा
1: आज
0: अच्छा
1: 8 मई हो चुकी है, तब भी मौसम एकदम खुशगवार है।
0: अच्छा जी। तो मोहब्बत की नगरी में इन दिनों माहौल और फिज़ाएँ बहुत ही खुशनुमा हैं।
1: जी
0: हम
1: बिल्कुल।
0: आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है, और इस कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं कि रेडियो ने, आकाशवाणी ने आपके जीवन को कितना समृद्ध किया है। कौन सी ऐसी सीख है जो आपने रेडियो से सीखी, आकाशवाणी से सीखी है? कोई ऐसी
1: रेडियो से
0: बात या
1: सबसे बड़ी
0: याद?
1: चीज तो हमने ये सीखी कि हमें दूर दूर के श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि हमारा एक ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र क्लब है जो हमें जोड़ता भी है, रेडियो से भी जोड़ता है और श्रोताओं से भी जोड़ता है, क्योंकि हम कई सारे केंद्रों पे इन्वॉल्व रहते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन वाले जो स्टेशन है आकाशवाणी के। और ये जो ब्रज रेडियो श्रोता मित्र क्लब है, ये कई सारे केंद्रों से जुड़ा रहता है, और इसका यही काम है कि श्रोताओं को रेडियो से जोड़ना। और रेडियो का जो काम है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये रेडियो का सिद्धांत रहा है शुरू से आकाशवाणी का। तो रेडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, अच्छी अच्छी जानकारियां तो मिलती हैं और मनोरंजन भी होता है, साथ ही कई सारे ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जो हमारी जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। और खास करके हम तो संगीत से जुड़े रहते हैं, तो हमें संगीत के कार्यक्रम, चाहे वो सुगम संगीत हो, फिल्म संगीत हो, लोक संगीत हो, या फिर जो भी संगीत से जुड़े कार्यक्रम हैं, बहुत पसंद आते हैं हमें, और हम उन कार्यक्रमों को बड़ी चाव से सुनते भी हैं सर।
0: आपकी बातों को अगर हम सार संक्षेप में कहें तो आकाशवाणी ने अपने लोकगीतों को, लोक रागों को, लोक व्यक्तित्वों को अपने इन कार्यक्रमों में जगह देकर हमारी संस्कृति को बचाने में अहम दो योगदान दिया है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी जो पुरानी परंपरागत संस्कृति है उसको जीवंत रखने में आकाशवाणी की अहम भूमिका है, चाहे वो होली गीत हों, चाहे वो नवरात्रियों में माता रानी के गीत हों, चाहे दीपावली हो, यानी जितने भी हमारे, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, हर तरह के गीत, हर तरह के संगीत से और हर तरह के जो योग्य कार्यक्रम होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है हमारी देशभक्ति के प्रति, हमारी परंपरागत पौराणिक संस्कृति के प्रति, वो सभी कार्यक्रम प्रसारित करके आकाशवाणी ने अपनी एक अहम भूमिका अदा की है।
0: चलिए, आपकी इसी बात को बढ़ाते हुए आगे हम एक गीत आपकी नज़र करते हैं। आपने हमें
1: धन्यवाद
0: फ़ोन
1: सर।
0: किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू
0: नमस्कार।
1: सर, नमस्कार।
2: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम।

0: हाँ जी नमस्कार। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, आप अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से। बस
0: अरुण साहब कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: जी
0: और आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आज हमारी बातों का जो विषय है वो है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, रेडियो ने आपके जीवन को किस तरह समृद्ध किया है, क्या दिया है रेडियो ने आपको, आकाशवाणी ने क्या दिया है आपको जीवन में, ऐसा कौन सा बदलाव, ऐसा कौन सा योगदान किया है जिसे आप
1: रेडियो ने
0: रेखांकित
1: तो
0: करना चाहेंगे?
1: सब कुछ दिया है, ज्ञान वर्ग दिया है, सब कुछ दिया है रेडियो ने तो। रेडियो तो जीवन साथी है,
0: अरे वाह।
1: उससे रेडियो तो सबसे जीवन साथी है, कम से कम 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। उससे सब कुछ ज्ञान भी मिलता है, उससे समाचार मिलने को मिलते हैं, खबरें मिलते हैं, और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, क्रिकेट सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, हर चीज मिलती है उससे ज्ञान मतलब।
0: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 25 सालों में ऐसा कौन सा बदलाव ख़ास तौर पर आपको रेडियो पर सुनाई दिया जिसको आप अभी हमारे साथ में साझा ज़रूर करना चाहेंगे?
1: जी देखो, परिवर्तन तो बहुत हो गए हैं, लेकिन अब इतना ध्यान जानकारी ध्यान तो खैर नहीं है, लेकिन पहले लाइव चलता था, फौरन जो प्रोग्राम जी सुने, और ये अब रिकॉर्डिंग हो गई, होना चालू हो गया है अब।
0: चलिए, आपने एक बहुत बड़ी बात को पकड़ लिया है कि ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्डेड जा रहा है, इससे पहले ये लाइव जाया करता
1: जी
0: था। आपने लगातार इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति इसी तरह बनाई हुई हुई होगी। हम
1: जी जी
0: चाहते हैं कि आप
1: बिल्कुल
0: इसी तरह आकाशवाणी से जुड़े रहिए। एक गीत अभी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।
1: जी, नमस्कार।

0: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार।
0: अंग फरियाद जिला हमीरपुर तहसील राठ ग्राम कहता से बोल रहे।
1: कौन बोल रहा है जी?
0: अंगद परियार।
1: अंगद जी कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जिला हमीरपुर तहसील राठ ग्राम कहता से।
1: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक है, बैठे हैं।
1: अच्छा, आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है और इस
0: हाँ
1: कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि
0: हाँ
1: आकाशवाणी ने आपके जीवन को किस तरह समृद्ध किया है, किस
0: हाँ
1: तरह आकाशवाणी ने कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वाकया आपके जीवन में जोड़ा है जो आप हमसे इस वक्त बताना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं के साथ में साझा करना चाहेंगे?
0: नहीं अभी नहीं।
1: अच्छा, रेडियो से जुड़ी हुई कोई बात अभी आपको फ़िलहाल याद नहीं आ रही है?
0: हाँ नहीं आ रही है।
1: तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते आए हैं हमारे?
0: हम कुल कार्यक्रम खुल सुनते हैं। हाँ
1: सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
0: सभी खुल सुनते हैं हम। हमारे पास रेडियो भी है।
1: अच्छा जी, तो
0: हाँ
1: रेडियो पर कौन सा स्टेशन आप सुनते हैं, कौन सा केंद्र सुनते हैं?
0: भोपाल।
1: भोपाल सुनते हैं।
0: हाँ
1: तो भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले किसी खास कार्यक्रम को आप याद करना चाहेंगे?
2: कैसे हो गए?
0: भोपाल से कार्यक्रम की याद करना चाहते हो वो। हेलो मैम।
1: हाँ जी नमस्कार।
2: हाँ जी नमस्कार, मैं धीरज सिंह परिहार बोल रहा हूँ, ग्राम कैथा तहसीलदार जिला हमीरपुर से।
1: तो बताइए, आज ये कौन सा ऐसा वाकया है, कौन सी ऐसी याद है जो आप रेडियो के साथ में साझा करना चाहेंगे आकाशवाणी के
0: रेडियो।
1: जुड़ी हुई? कोई ऐसी बात जिसको आकाशवाणी से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद जिसने आपके जीवन को एक नया मोड़ दिया हो, जीवन को समृद्ध बनाया हो?
0: आकाशवाणी भोपाल तो बहुत अच्छे कार्यक्रम पेश करती है। और
1: चलिए, तो आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे, आइए हम और आप मिलकर ये गीत सुनते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार सर।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी। जी फोन करें कि सुने का जी क्लियर कॉल
0: नहीं,
1: किए कि आपने फोन
0: आज
1: लगाया है।
0: आज जो है वो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं। 90 सालों तक का जो एक सफ़र किया है,
1: हाँ
0: 90 वर्षों की एक जो यात्रा है आकाशवाणी की, इस यात्रा में आप जैसे श्रोता हमारे सहभागी बने हैं, हमारे साथी बने हैं। तो आकाशवाणी ने आपको क्या दिया है इन 90 वर्षों में, या जब से आपने आकाशवाणी सुनना शुरू किया है तब से क्या परिवर्तन आया है आपके जीवन में, क्या ऐसा
1: बहुत
0: योगदान रहा है
1: परिवर्तन
0: रेडियो
1: आया
0: का?
1: है सर। मैं
0: जी
1: हरिशंकर खेमरिया कोलारा जिला शिवपुरी से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी
1: बहुत परिवर्तन आया है और रेडियो सुनने से मेरे सारे सुनता रहता हूँ। और मैं कल अभी बहुत दिन से जो फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लग नहीं रहा था फोन।
0: जुड़ा है, फ़ोन कॉल शामिल किया जा रहा है। तो बताइए ना, रेडियो से क्या ऐसा आपको सीखने को मिला है?
1: बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। सारी गलत बातें छोड़ के और अच्छे विचार, अच्छे आचार, अच्छे गीत सुने, अच्छा मन रहे, अच्छा मनोरंजन हो और परिवार में सुख शांति रहे।
0: तो ये रेडियो ने आपको ये विचार दिए हैं, ये रेडियो की ये आपको देन है कि आप अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा
1: हाँ
0: बोलना
1: अच्छा
0: चाहते
1: सुनना
0: हैं।
1: चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं।
0: वाह, चलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं हम, कि हमारे विचारों को अगर हमने सही दिशा में मोड़ लिया तो हमारे काम सही दिशा में होने लगेंगे, और जब हम अपने अच्छे कामों को करेंगे तो हमारे जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही, सकारात्मक परिवर्तन आएगा ही, हमसे जुड़े लोग भी इस
1: अच्छे
0: बात से
1: कार्य करने
0: लाभान्वित
1: के साथ
0: होंगे।
1: साथ हम भगवान की भक्ति भी करना चाहते हैं सर।
0: वाह वाह वाह वाह, चलिए इसी बात को हम यहीं पर विराम देंगे, एक गीत आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।
1: हमारी पसंद का गीत नहीं सुनवाएंगे सर?
0: हाँ, ये आपकी पसंद के गीत तो हम अलग अलग कार्यक्रमों में सुनवाते आए हैं, आज जो है बात आपकी रहेगी, गीत हमारे रहेंगे।
1: अच्छा अच्छा ठीक है सर जी,
0: नमस्कार।
1: ठीक।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: सर जी, मेरा प्यार भरा सप्रेम नमस्कार। मैं नवागढ़ कटे जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: नारायण प्रसाद जी,
1: जी सर,
0: बेमेतरा
1: जी सर,
0: छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया है।
1: जी सर।
0: रेडियो से आपका नाता कब से जुड़ा है? क्योंकि
1: अभी जब से
0: आज
1: मैं, हाँ सर जी,
0: जी आज बात आपकी गीत हमारे में, हम इसी विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं।
1: जी सर,
0: हम
1: जी सर,
0: आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेडियो से कब से आपका जुड़ाव हुआ है, कब से आपने रेडियो आकाशवाणी को सुनना शुरू किया है।
1: हाँ सर जी, जब से मैं विद्यार्थी जीवन में था सर जी, तभी से मैं रेडियो सुनना चालू किया हूँ। और 82 में सर जी मैं हायर सेकेंडरी किया हूँ, और उसके बाद तो रेडियो से जुड़ा ही रहा हूँ पहले से। और अभी तक मुझे जो रेडियो का सहयोग है, या कहिए तो इनसे जो हमारे लिए देन है, वो बहुत बड़ी देन है सर जी। हमने चलना सीखा, खाना सीखा, पीना सीखा, और जो भी हमारे जीवन में दिनचर्या की बातें हैं वो सब हमने रेडियो से ही सीखे हैं सर जी। रेडियो की जो प्रस्तुति है हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है सर जी।
0: बहुत बड़ी बात आपने कही है कि रेडियो ने आपके जीवन को इस तरह संवारा है, सजाया है कि
1: जी सर,
0: आपने
1: जी
0: अपनी
1: सर,
0: प्रत्येक गतिविधि को रेडियो के माध्यम से सीखा है, रेडियो के साथ जोड़ के रखा है।
1: जी सर,
0: तो 90 वर्षों का जो एक लंबा सफ़र आकाशवाणी ने तय किया है, वह आप
1: जी सर,
0: जैसे श्रोताओं के इन्हीं कदमों के साथ में, इन्हीं कदमों के साथ में साझा किया है। आप बराबर के साझेदार हैं आकाशवाणी के इन गौरवशाली वर्षों के।
1: जी सर, जी
0: आइए एक
1: सर,
0: गीत आपके नाम करते हैं।
1: जी
0: आप इसी
1: सर,
0: तरह आकाशवाणी से जुड़े रहिए। आपको करते हैं हम नमस्कार।
1: नमस्कार सर जी।
2: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
3: डन
2: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
3: क्या?
2: मैंने पूछा, बागों में बाहर है? गलियों पे निखार है?
3: हाँ है।
2: तो तुमको मुझसे प्यार है?
3: ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी भोपाल।
1: हाँ जी आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
2: फोन करो, गीत सुनो।
1: आज बात आपकी गीत हमारे,
2: मैं बुरहानपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: बुरहानपुर एमपी से।
1: हाँ जी हाँ जी,
2: मोहम्मद हुसैन अंसारी।
1: हाँ जी अंसारी साहब, आज हम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आकाशवाणी के जो इन 90 वर्षों की यात्रा के आप और हम साझेदार रहे हैं, साझी रहे हैं, इस यात्रा में आप आकाशवाणी के किस योगदान को हमारे बीच में बताना चाहेंगे, रेखांकित करना चाहेंगे?
2: अरे ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ।
1: हाँ हाँ,
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा,
2: टीवी से बेहतर आकाशवाणी रेडियो रहते हैं। और जब भोपाल आकाशवाणी भोपाल से शुरू हुआ तो बहुत खुशी हुई। चलो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने राज्य में भी शुरू हो चुका है। बहुत सी मालूमात हासिल हुई है और बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा जी,
2: 90 वर्ष पूरे होने पर तो और भी खुशी हुई है।
1: आप जैसे श्रोताओं की
2: आगे बढ़े और आगे बढ़े,
1: आप जैसे श्रोताओं की इन्हीं शुभकामनाओं दुआओं के बदौलत ही हमने ये बहुत लंबा लगभग 2 सदियों का सफ़र तय किया है। आप और ऐसी कोई ख़ास बात या कोई वाकया हमारे साथ में ज़रूर बताना चाहें तो हम उस बात को ज़रूर हमारे दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे।
2: बस बीच बीच में हम बीमार पड़ गए, अटैक आ गया था, तो कुछ अपने जो 1 महीने तक सुने नहीं हमने। तकलीफ हुआ हमको, कुछ मालूमात हासिल हो जाती। जैसे सेहत की तरह, सेहत के बारे में बताते हैं, जिस्मानी तकलीफों के बारे में बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं। बहुत से प्रोग्राम है अपने आकाशवाणी भोपाल से जो निकल गए दो महीने में, तो हमको उसका बहुत अफसोस है।
1: कहते हैं कि दुनिया बनाई है, इन दुनियाओं को आप हमारे साथ में साझा कर रहे हैं, आपकी इन्हीं बातों को हम इस तरह सजाते हुए

0: हमारे इन कार्यक्रमों को पेश करते आए हैं। आइए एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। इसी तरह आकाशवाणी और हमारा और आपका साथ बना रहे।
1: मिलाप रहे, मिलता रहेंगे इंशाल्लाह।
0: नमस्कार जी।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी भोपाल लगाया है
0: हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं
1: जी सर।
0: और हम इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम के लिए।
1: जी सर गाना सुनना।
0: आज चूंकि विषय हमारा है कि आकाशवाणी के जो 90 वर्षों की यात्रा रही है, इस यात्रा में आपने आकाशवाणी से क्या सीखा, आकाशवाणी का क्या योगदान रहा आपके जीवन में, कौन सी ऐसी बात है जो आकाशवाणी से जुड़ी हुई है और आप उस बात को हमारे दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: आकाशवाणी से सब सीखा है, खेती किसानी का सीखा है और हर चीज आता है और गाना भी सुनते हैं। चेला है हम,
0: अच्छा जी,
1: रेडियो बगल में चलता रहता है।
0: अच्छा, काम के साथ में आपका रेडियो हमसफर बना हुआ है ये कह सकते हैं।
1: रेडियो से हर चीज मिलती है सर, हर काम सीखते हैं। अच्छी बातें कहने से अच्छा दिमाग होता है, सुनने से खेती किसानी के आते हैं, ये बीमारी है डॉक्टर लोग आते हैं, इनसे हर शिक्षा मिलती है कैसी बीमारी को कमाना चाहिए।
0: इन सब चीज़ों से, इन प्रसारणों को सुनते हुए आपके दिन में, आपके काम में कोई व्यवधान तो नहीं होता है?
1: नहीं होता है सर, रेडियो बजता है उसमें क्या व्यवधान होता है, सुनते रहते, मशीन चलाते रहते।
0: अरे वाह, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपको कुछ न कुछ ऐसी बातें ज़रूर सीखने को मिलती होंगी जिनसे आपको

0: कुछ ना कुछ लाभ जरूर हुआ होगा।
1: हाँ लाभ हुआ है सर, लाभ हुआ है।
0: जी, तो ऐसा कोई पल जो आप हमको ज़रूर बताना चाहेंगे।
1: आकाशवाणी से सबसे ज्यादा सीखा है खेती किसानी का।
0: अच्छा,
1: हाँ, वेद वैज्ञानिक लोग जो बात है बताते हैं, वेद में उन्हीं को उसी से दवा लेकर बाजार से दवाई का छिड़काव है चीज, खेती का जो उपचार करने बीज का वो भी सीख कर रहता हूँ, उसी तरीका से खेती कर।
0: आपकी खेती है।
1: जी
0: अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जो कार्यक्रम आते हैं, जो किसान भाइयों के लिए रहते हैं, जिनके माध्यम से हम तरह तरह के मौसम से जुड़ी हुई सलाहें
1: हाँ
0: हमारे
1: मौसम
0: श्रोताओं
1: से
0: तक
1: जुड़ा
0: पहुंचाते हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक हमारे अलग अलग मुख्तलिफ कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति के माध्यम से जो जानकारियाँ देते हैं, इन जानकारियों से आप जैसे किसानों को, आप जैसे अन्नदाताओं को लाभ होता है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण होता है। हम अलग अलग कार्यक्रमों को लेके आते हैं, अलग अलग श्रोता वर्गों के लिए कार्यक्रम लेके आते हैं, तो जिन कार्यक्रमों को हम किसान भाइयों के लिए पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उन कार्यक्रमों से अगर हमारे किसान भाई लाभान्वित होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। आइए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे
1: जी।
0: और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें। नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: और इसी के साथ ख़त्म होता है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोचीशे बोईशाक के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यता गदात्मा के शाश्वत आवास के रूप में अपनी छाप छोड़ी। प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क में 2 चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनू नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज 2रा दिन है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हैं आप सभी के पत्रों के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप सभी की फरमाइश से। लिखने वाले हैं नहीर नगर महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस, शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि। उपाध्याय नगर देवा से मुरलीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। देवा से ही राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश, हरिराम माली, विष्णु, कपिल और निरंजन। उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद, सालग्राम, दशरथ। और देवा से ही जमीर खान, इमरान और फुरकान। आप सभी ने सुनना चाहा है एक दूजे के लिए फिल्म का नगमा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं बहू बेगम फिल्म का नगमा, जिसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं विद्यानगर तेंदुखेड़ा से ओम प्रकाश नेमा, किरण, आकाश, विकास, नंदिनी, शिवांश और इनके परिवार के सभी सदस्य, धमतरी से रामचंद मखीजा, शंकर लाल, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

रेबे कॉलोनी से जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक, शोभा और समस्त इनके परिवार, इन्होंने ये हमें ख़त लिखा बठिंडा से। सिंहपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा, आप सभी ने सुनना चाहा है हमराज फिल्म का नगमा अलका याग्निक की आवाज़ में।

मैं हूं ना फिल्म का गीत सुनने के दुश्मन है लास्ट बीट सही से प्रकाश बगैया प्रयाग प्रदीप और केशव पटेल पटेल नगर मनोज पंजाब से रमेश कुमार जरूजिया गीता रानी गगनदीप बेबी आरजू तो आइए आप सभी की पसंद पूरी करते हैं और सुनवाते हैं मैं हूं ना फिल्म का गीत।

औरंगाबाद से राजेश साबले, शीतल, राजदीप, राशि और इनके परिवार के सभी सदस्य। सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतजा, मोहम्मद शादाब खत्री और रमेश गौंड। आप सभी ने सुनना चाहा है टाइगर जिंदा है फिल्म का नगमा, तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

तो श्रोता, ये था आज का हमारा आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आप इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। ये आकाशवाणी का आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं जादूगर को सलाम धारावाहिक का 10वां भाग।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। धारावाहिक की 10वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की ही एक कहानी, गुप्त धन का नाट्य रूपांतरण। बाबू हरिदास का ईंटों का भट्टा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और भट्टों से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों में सजाते। एक आदमी भट्टे के पास एक

0: बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंटें जितनी ही ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़ियां मिला करती। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से दबे हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य होता था। सबसे करुण दशा एक छोटे से लड़के की थी, जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दूनी ईंटें उठाता और सारे दिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता था। लेकिन मगन सिंह को अपने काम से ही काम था। उसमें लड़कपन की चंचलता नहीं थी, ना शरारत और ना ही होशियारी। यहाँ तक कि उसके होठों पर कभी हंसी भी नहीं आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर बहुत दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दे। कभी कभी उसे वो कुछ खाने को भी दे देते थे। एक दिन उन्होंने मगन सिंह को अपने पास बुलाकर बैठाया और उसका समाचार पूछने लगे।
1: मगन सिंह बेटा, जरा अपने और अपने परिवार के बारे में तो कुछ बताओ।
2: जी बाबू जी, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ।
1: अच्छा।
2: वही हमारा पुराना सा घर है, जिसमें मेरी बूढ़ी माँ के सिवा और कोई नहीं है। माता एक पुराने रोग से पीड़ित है, इसलिए घर का सारा काम मेरे जिम्मे में है। बाबूजी, शाम को काम से वापस लौटकर मैं खुद ही रोटियां बनाता हूँ, तब जाकर हम माँ बेटे को खाना नसीब होता है। हम ठाकुर लोग हैं और किसी समय हमारा खानदान धन संपन्न था और शकर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, पर आजकल रोटियों के लाले हैं।
1: गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते?
2: वाह, उनका वश चले तो मुझे मार ही डाले। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं।
1: तुम्हारा तो पुराना घर है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुम्हें कुछ बताया नहीं?
2: नहीं बाबूजी, कुछ नहीं बताया। अगर रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती।
1: मगन, आज से तुम्हारे बुरे दिन दूर, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ।

0: आपको पाकर मेरा जीवन सफल हो गया।
1: मुंशी जी।
2: आया हुजूर।
1: मुंशी जी, आज से ये कौड़ियां बांटने का काम करेगा, इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखा दीजिए।
2: माँ।
3: हाँ बेटा, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है।
0: माँ, आज से हमारे बुरे दिन दूर हुए। माँ, जहाँ मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, वही बाबूजी के यहाँ, हाँ वहाँ आज बाबूजी ने मुझे अपने पास बिठाया। उन्होंने बहुत सारी बातें की और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा।
3: अच्छा, मेरे बारे में पूछा?
0: उन्हें मुझे काम में तरक्की भी दे दी है। अब मैं मजदूरी नहीं करूँगा, मैं उनका खास नौकर बन गया हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने की बात भी की है।
4: हाँ, और फिर तुम भी जल्दी अच्छी हो जाओगी माँ।
3: अच्छा मेरे लाल, जीते रहो मेरे बेटे, जुग जुग जियो मेरे बच्चे। हे भगवान, तूने मेरे अंधियारे घर में रोशनी की एक नई किरण भेजी है, जिन्होंने मेरे लाल को ये खुशी दी है। तुम उनका भी घर खुशियों से भर देना, हे भगवान, खुशियों से भर देना। बेटा मगन, वहाँ पर मन लगाकर काम करना, अच्छा? उन्हें किसी भी शिकायत का मौका मत देना।
0: हाँ माँ, ऐसा ही होगा।
5: अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यनिष्ठ और चतुर लड़का था। मगन सिंह काम पर हमेशा समय से पहुंचता और कभी भी छुट्टी नहीं करता था। थोड़े ही दिनों में

0: उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी वो कुशल हो गया। बरसात के दिन थे, भट्टे में पानी भरा हुआ था, काम धंधा बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से काम पर नहीं पहुंचा था। हरिदास को चिंता हुई, कई आदमियों से पूछताछ भी की, पर कुछ पता नहीं चला। चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के वो घर जा पहुंचे। घर क्या था, घर तो जैसे खंडहर बन चुका था, लेकिन परिवार की पुरानी संपन्नता का एहसास करवाता था।
1: क्या बात है, 3 दिन हो गए, मगन सिंह का कुछ पता ही नहीं। कहीं बीमार तो नहीं हो गया या कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई?
2: मगन सिंह, बेटा मगन सिंह, अरे कोई घर में है क्या?
3: अरे बाबूजी, आप आइए, बाबूजी आइए आइए।
2: अरे मगन सिंह, कई दिन से आया क्यों नहीं, माताजी का क्या हाल है?
3: बाबूजी, अम्मा आजकल बहुत बीमार हैं, कहती हैं नहीं बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कहा, पर मैं संकोच के मारे आपके पास नहीं आ पाया। अब आप सौभाग्य से हमारे घर आ गए हैं, तो जरा चलकर उन्हें भी देख लीजिए, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी।
0: सारे घर में दरिद्रता का वास था, केवल 2 कोठरियां गुजर करने लायक थीं। मगन सिंह ने 1 कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बुलाया। हरिदास भीतर गए तो देखा कि लकड़ी के तख्त पर पड़ी एक वृद्धा कराह रही है।
4: आह, बड़ी दया की आपने मालिक, आपके दर्शनों की अभिलाषा थी मुझे, मेरे अनाथ बच्चे के अब आप ही नाथ हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, बस वही निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। एक समय हुआ करता था जब हमारे घर में लक्ष्मी का वास हुआ करता था, मगर बुरे दिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने उसी दिन के लिए कुछ खजाना जमीन में छुपा दिया था। मालिक उसके कागज पत्र बड़े यत्न से संभाल कर रखे थे मैंने, पर बहुत दिनों से उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मगन के पिता ने बहुत खोजा, पर कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मालिक। नहीं तो आज हमारी इतनी बुरी दशा नहीं होती। मालिक, आज 3 दिन हुए मुझे वो कागज पत्र अचानक खुद ही रद्दी के कागजों में मिल गए। बस तब से उन्हें छिपा कर रख लिया है, उसमें सब बातें लिखी हैं, उसी से खजाने के ठिकाने का भी पता चलेगा। मालिक, अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा मालिक। बस यही सब कहने को आपको बार बार बुलाती रही। आपके सिवा मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा, संसार से विश्वास उठ गया है मालिक। किसी की नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।
0: हरिदास ने उस कागज का जिक्र किसी से नहीं किया। हरिदास की नियत बिगड़ गई। कागज को पढ़ने से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 कदम दूर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह कि किसी को कानो कान खबर ना हो। काम मुश्किल था, नाम पर धब्बा लगने की अधिक आशंका थी, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है। कितनी घोर निष्ठा थी, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की तरह पाला, उसी के साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे, परंतु अंत में लालच ने विवेक को हरा दिया।
1: मैंने कभी धन का परित्याग नहीं किया और न करूंगा। क्या कोई प्राणी ऐसा भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हुआ हो? यदि है तो वो मनुष्य नहीं, देवता है। मैं तो सिर्फ एक मनुष्य हूं, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने की कोई इच्छा नहीं है।
0: मन को समझाना बच्चे को जैसे फुसलाना है। हरिदास शाम को सैर करने के लिए घर से निकल जाता। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर जा बैठता और एक कुदाली से उसे खोदता रहता। चबूतरा लंबा चौड़ा था, उसे खोदते खोदते एक महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय ना हुई थी। हरिदास एक विचारशील पुरुष थे, आत्मा बार बार उन्हें धिक्कारती। निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर कभी नहीं जाऊंगा, पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता, बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। और इसी तरह दूसरा महीना भी बीत गया।
2: आज चबूतरा खोद डालूंगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, पर कोई चिंता की बात नहीं। घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चित हो जाएगा कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तहखाना न मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा है, और धोखे के सिवाय कुछ नहीं। कहीं सचमुच तहखाना न मिला तो मुफ्त में ही उल्लू बनूंगा। पर लेकिन नहीं, कुदाली खट खट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चमक है, तहखाना मिल गया, तहखाना मिल गया। ये सिर में दर्द कैसा है? शायद थकान के कारण होगा। नहीं, नहीं, ये बीती रात नींद पूरा ना होने से है शायद।
0: ये दर्द और थकान नींद से ना गई। रात को ही हरिदास को जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे, पर किसी दवा से भी फायदा नहीं हुआ।
2: कहीं ये मेरे लालच का दंड तो नहीं है? जी में ऐसा आता है कि मगन सिंह का कागज दे दूं और माफी मांग लूं, पर भेद खुल गया तो नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। अरे
0: और इस प्रकार हरिदास गुजर गए। हरिदास की मृत्यु के बाद वो कागज उनके बेटे प्रभु दास के हाथ लगा।
5: ये कागज मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। पिताजी कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नियत पर संदेह किया ही नहीं जा सकता। जब उन्होंने इस काम को गलत नहीं समझा तो मैं ही ऐसा क्यों सोचूं? कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख का जीवन बीते। हाँ,
0: इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही प्रभुदास घर से बाहर निकला। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थीं। और वही तेज कुदाली थी। ऐसा ज्ञात होता मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही हो। तहखाना संगीन था, पुराने जमाने का मसाला था, कुल्हाड़ी लौट लौट आती थी, लेकिन चट्टान टस से मस ना हुई। किसी से सहायता मिलने की सूरत ही नहीं थी, सारा काम स्वयं ही करना था। समय बीतता रहा, यहां तक कि फिर वही अमावस्या की काली रात आ गई। प्रभुदास को जोर लगाते लगाते 12 बज गए और चट्टाने भाग्य की रेखाओं की तरह अटल थीं। आज इस समस्या का हल करना आवश्यक है, मेरे मन की लालसा मन ही में न रह जाए। क्या करूं, बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। हाँ, क्यों ना बारूद से उड़ा डालूं। कल पर काम छोड़ने का अब तो कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ, बाजार जाकर अभी बारूद लाना होगा। अरे, सब दुकानें बंद हो चुकी, रात भी काफी हो चुकी है। हाँ, वो आतिशबाजी की दुकान अभी खुली है। हाँ, शायद बारूद वहां मिल जाए, उसी से जाकर पूछता हूँ।
2: बारूद इस समय नहीं मिल सकता भाई, सरकारी हुकुम नहीं है। तुम कौन हो जी?
0: अरे, तुम्हें इससे क्या मतलब है?
2: लेकिन इस समय बारूद लेकर क्या करोगे भैया? कोई वारदात हो जाए तो? ना भैया ना, मैं मुफ्त में बंधा बंधा फिरूंगा, तुम्हें कौन पूछेगा?
0: अब तो हो जाएगा ना, क्यों?
2: ठीक है भैया, ले जाओ, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कह देता हूँ। हाँ,
0: आखिरकार खजाना मिल ही गया, इसमें तो बहुत वजन है, क्या मैं इसे उठा पाऊंगा? लगता है 10 से 12 हजार मोहरे तो होंगी। कोशिश करता हूं। सच में जीवन बदल जाएगा, सब मेरे वश में होगा, फिर जो चाहे मैं कर सकूंगा। लेकिन कहां छुपाऊं ये खजाना? हाँ, ये जगह सुरक्षित है, अपने शयन कक्ष में ही अपनी आंखों के सामने रखता हूं। यही ठीक रहेगा। चलो भैया, ये भी हो गया, कुछ देर अब आराम करूं। ये क्या, मेरे दिल में बेचैनी सी कैसी हो रही है? ये कैसा भीषण दर्द हो रहा है? अरे, ऐसा तो पहले कभी महसूस ही नहीं किया। अरे, ये तो मेरे दोनों कंधे भी जकड़े जाते हैं, अब सांसें भी रुकी जाती हैं। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे तो हाथ पैर पोजी लोचने। क्या ये सब थकान की वजह से? दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, मेरी सांसें बंद हो जाती हैं। माँ, अरे कोई है? माँ,
4: प्रभुदास बेटा, क्या हो गया?
0: माँ, मेरा सिर दर्द से फटा जाता है, सांसें रुकी जा रही है, पता नहीं अचानक क्या हुआ माँ।
4: अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मीना,
6: ओ मीना, ठहरो मैं भी वैद्य जी को बुलाती हूँ।
5: हाँ माँ।
0: सारी रात मीना और माँ प्रभुदास के सिरहाने बैठी रहीं। वैद्य जी उपचार करते रहे परंतु सब बेकार। बुखार था कि कम होने का नाम ही नहीं लेता था। और इसी में सारी रात निकल गई।
7: भट्टे पर चलिएगा हुजूर, गाड़ी तैयार है।
5: नहीं, मैं आज नहीं चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है। अब मगन सिंह, एक काम करो, तुम भी मत जाओ आज।
7: सरकार, डॉक्टर साहब को बुला लाता हूं, आप आराम कीजिए।
5: कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मगन सिंह, कुछ नहीं हो सकता।
0: सवेरे के 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। बाबू हरिदास की अंतिम दशा आंखों के सामने तैर गई। ऐसा जान पड़ता था मानो वही शोक घटना उन्हीं आंखों के सामने दोबारा घटित होने जा रही हो। मां देवताओं की मनोतियां मना रही थी और यही हाल प्रभुदास की धर्मपत्नी मीना का था। परंतु प्रभुदास की आंखें उसी संदूक की ओर लगी हुई थीं।
8: हे भगवान, मेरे बेटे के जीवन की रक्षा करो, इसे क्या होगा। हे भगवान, हे प्रभु, मेरी सुहाग की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरी सुहाग की रक्षा कीजिए।
9: हाँ भैया, पिता और पुत्र दोनों ही भले लोग थे।
10: हाँ भैया, सही कहते हो, पर एक बात समझ में नहीं आती, जैसा बाबू हरिदास के साथ हुआ ठीक वैसा का वैसा प्रभुदास के साथ हो रहा है।
11: हाँ भैया, ये कैसी दैवी विपत्ति इनके घर पर आ गई।
12: लाला जी, दोनों बाप बेटे भूल कर भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, ईश्वर ही अब इस घर का मालिक है।
0: प्रभु दास की मृतप्राय आंखों में आंसू थे, पर आंखें अभी भी निराशा पूर्ण भाव से संदूक पर ही टिकी थीं। प्रभु दास के हाथ पांव सर्द हो चुके थे, मुख निस्तेज हो चुका था, हृदय गति बंद हो चली थी, सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, लेकिन आंखें थीं जो अभी भी संदूक से नहीं हटती थीं। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण और सबसे भयंकर दृश्य है। मगन सिंह के लिए माता की मृत्यु के उपरांत ये इतने कम समय में तीसरा अवसर था।
3: मालिक, मालिक, ये आपको क्या हो गया मेरे अन्नदाता मालिक।
5: मगन सिंह की ओर देखता हूं तो सारे शरीर में मानो जीवन का संचार हो जाता है, और संदूक की ओर देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। मगन सिंह, मगन सिंह, इधर आओ
3: मालिक,
5: इधर
3: मालिक।
5: ये संदूक तुम्हारे पुरखों का खजाना है, तुम्हारी अमानत है। हाँ, मगन सिंह, ये तुम्हारी अमानत है, मुझे और पिताजी को क्षमा कर देना, पिताजी को और मुझे क्षमा कर देना, चलता हूँ।
3: मालिक, मालिक।

वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय, साक्षी राय, कनिका शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, मनहा प्रत्यक्षा, माधवा अनंत, हीरेंद्र झा और विकास बाबू शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोचशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवास के रूप में अपनी छाप छोड़ी। प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कूनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। यह दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

जिंदगी में आए इम्तिहानों से घबराइए नहीं, बल्कि शुक्रिया कहिए उस परमात्मा को जिसने आपको इम्तिहानों के काबिल समझा है। इस सुविचार के साथ हाजिर हूँ मैं कल्पना मिश्रा, आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। नमस्कार बहनों, आज हम सरकार की एक और योजना पर बातचीत साझा करेंगे जो कि महिलाओं के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है नंदिनी सहकार योजना। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप शुरू की गई थी। ये योजना महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सहायता की एक और पहल है। यह महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इसमें महिला उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण और अन्य

योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी और ब्याज अनुदान जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को एकीकृत किया गया है। बहनों, इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC के तहत महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का पहला उद्देश्य वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करके सहकारी क्षेत्र में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। यह कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे कई क्षेत्रों में भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है, जिससे महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर मिल सकें। इस योजना की विशेषता ये है कि यह सहकारी व्यावसायिक उद्यमों को प्रोत्साहित करके महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही विकास गतिविधियों के लिए महिला सहकारी समितियों को कम लागत वाली वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर देता है। तो बहनों, बातें हम और भी करेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। अब आइए सुनते हैं एक गीत जिसे हमने लिया है फिल्म हीरा पन्ना से और जिसे अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

अभी हमने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म हीरा पन्ना का ये गीत सुना। बहनों, आज का परिवेश ऐसा है कि लोगों को सुंदर और आकर्षक दिखना बहुत पसंद होता है। हर कोई सजना सवरना चाहता है और हम महिलाओं में तो इसका क्रेज बहुत ही ज्यादा होता है। इसके लिए हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ब्यूटिशियन बनना एक ऐसा काम है जो रोजगार का बहुत ही अच्छा माध्यम बन गया है। तो बहनों, ब्यूटिशियन एक प्रशिक्षित पेशेवर होती हैं जो लोगों को सुंदर दिखने और बेहतर महसूस करने में हमारी मदद करती हैं। उनका काम है त्वचा की देखभाल और मेकअप से लेकर हेयर स्टाइलिंग और नेल केयर तक कई तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा वो सैलून, स्पा में या फ्रीलांसर के रूप में भी काम करती हैं। और बहनों, फेशियल, हेयर कट, हेयर कलर, वैक्सिंग और मैनीक्योर पेडीक्योर जैसी सेवाएं भी देती हैं। बहनों, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और ब्यूटिशियन के क्षेत्र में कैरियर के बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। 2026 तक यह उद्योग बहुत आगे बढ़ा है और इसमें नौकरी व स्वरोजगार के बेहतरीन विकल्प हैं। जैसे आप खुद का सैलून या पार्लर शुरू कर सकते हैं, जिसकी आजकल बहुत डिमांड है। इसके अलावा आप शादियों, पार्टियों या इवेंट्स में फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। बहनों, आजकल नेल आर्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसमें भी अच्छा कैरियर है और आप किसी बड़े सैलून, स्पा या वेलनेस सेंटर में सीनियर ब्यूटिशियन के तौर पर भी काम कर सकती हैं। बड़े पैमाने पर देखें तो फिल्म, टीवी या फैशन शो में मेकअप आर्टिस्ट की भूमिका निभा सकती हैं। बड़ी एयरलाइंस कंपनी एयर होस्टेस के लिए मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन नियुक्त करती है। साथ ही ब्रांड्स के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए कॉस्मेटिक कंपनियां कंसल्टेंट नियुक्त करती हैं और अगर आपको अनुभव है तो आप ब्यूटी स्कूल या एकेडमी में अपनी सेवाएं दे सकती हैं। बहनों, इस क्षेत्र में करियर शुरू करने के लिए प्रमुख कोर्स आपको करने होंगे, जैसे डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी, ये कोर्स 12 महीने का होता है, हेयर डिजाइनिंग और कलरिंग कोर्स, मेकअप आर्टिस्ट कोर्स और स्किन केयर या फेशियल कोर्स। बहनों, एक ब्यूटिशियन में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो हैं बालों की स्टाइलिंग, कटिंग और कलरिंग, मेकअप करना, स्किन केयर ट्रीटमेंट और फेशियल, साथ ही त्वचा की समझ और प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। बहनों, अब वक्त है छोटे से अंतराल का और आइए एक और गीत सुन लेते हैं। फिल्म है मेरे जीवन साथी, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने।

0: अभी हमने किशोर कुमार की आवाज में गीत सुना, फिल्म थी मेरे जीवन साथी। बहनों, आज है हमारे बीच वंदना द्विवेदी जी, जो कि एक ब्यूटिशियन है। पिछले 20 वर्षों से वो इस क्षेत्र में जुड़ी हैं। तो चलिए उनसे करते हैं विशेष बातचीत। विषय है ब्यूटिशियन में रोजगार की संभावनाएं।
1: आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आप एक ब्यूटिशियन है, तो पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने ये क्षेत्र क्यों चुना।
2: मुझे शुरू से शौक था कि मैं इस फील्ड में आऊं और इसमें काम करूं, पर थोड़ी सी समस्या आई मुझे इसमें आने के लिए, पर हो गया, मैंने इसको शुरू किया और मुझे 20 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए। आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं पूरी अपने जोश के साथ काम कर रही हूँ। तो इसलिए मेरा बाहर जाना, बच्चे छोटे थे तो बाहर नहीं जा सकती थी, घर में इतना अलाउ भी नहीं करते थे कि मैं बाहर जाऊँ या इस फील्ड में आऊँ, लेकिन मुझे शौक था। तो जब छोटी छोटी क्लासेस यहाँ होती रहती थी तो वो मैं अटेंड करती थी, सेमिनार्स अटेंड करती थी, उससे मैं थोड़ा करके सीखती रह गई। फिर बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हुए तो मुझे लगा नहीं, अब इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे आ गए। पहले मैं अपने घर के पास ही एक छोटा सा लेके सलून वहाँ चलाती थी और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ।
1: मैडम, हर रोज फैशन का ट्रेंड बदलता है, तो आप ट्रेंड के साथ खुद को कैसे अपडेट रखती हैं, वो भी आप हमारी श्रोताओं को बताइए।
2: फैशन तो हमारा हर तीसरे दिन चौथे दिन चेंज होता रहता है, लेकिन क्या होता है कि क्लाइंट हमारी जैसे डिमांड करता है। क्लाइंट कभी कभी हम बताते हैं कि नहीं, ट्रेंड ये चल रहा है, आप ये करवाओ, लेकिन नहीं, क्लाइंट बोलता है नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। तो हमारा सबसे पहले ये रहता है कि हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करें। तो फैशन जैसे क्लाइंट बोलता है उस हिसाब से हमको काम करना पड़ता है।
1: आपने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया होगा, तो आप हमारी श्रोताओं को बताइए कि कैसे ये कोर्स करते हैं और कितना इसमें वक्त लगता है।
2: ये कोर्स सब अलग अलग रहता है, जैसे कोई 3 मंथ्स का करता है, कोई 6 मंथ का करता है, कोई 12 मंथ का करता है। मेनली बेसिकली ये 6 मंथ का कोर्स होता है जो हमारा ब्यूटिशियन कराता है। फिर प्रैक्टिस रहती है, प्रैक्टिस अब ये अपने दिमाग के ऊपर, अपने मेहनत लगन के ऊपर होता है कि हम इसमें कितना टाइम लगा देते हैं। जो अगर दिमाग अच्छा और मेहनत किया तो वो 3 महीने में भी कोर्स कंप्लीट कर लेता है। और लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि हर गली हर मोहल्ले में सैलून खुल रहे हैं, तो लड़कियां क्या की कि महीने 2 महीने अपना कोर्स कर लें बस हमसे बनने लगा और वो खोल ली, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। तो मैं तो हर ब्यूटिशियन को ये बोलूं, जो आज की जनरेशन है और इस फील्ड में आ रही हैं, तो वो पहले सीखे तो ठीक है, सीख तो ली, लेकिन वो प्रैक्टिस करें। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम पीछे ही जाएंगे, तो प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी है। तो कोर्स तो ये 6 मंथ का ही रहता है, 3 मंथ का भी रहता है, बाकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम
1: कितना टाइम लगाते हैं सीखने में। मैडम, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप हमारी श्रोताओं को कुछ ब्यूटी टिप्स देना चाहेंगी?
2: बिल्कुल, गर्मी का मौसम चल रहा है तो इस समय तो सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, खीरा खाएं, या हमारे किचन से ही बहुत सारे ब्यूटी टिप्स हैं। जैसे दही हो गई, मैं बोलती हूँ क्लाइंट को, दही आप जिस किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो मैं उनको बोलती हूँ आप 2 स्पून दही वो करिए, निकालिए और चाय की छन्नी में डालिए, उसका पानी निकल जाता है, उसमें आप शहद मिलाइए और उसको फेंटिए, वो एक टाइट पैक तैयार हो जाता है। उसको आप फेस में अप्लाई करिए, वो एक ब्लीच का काम करता है। आप जब जाते हैं क्लाइंट यहाँ सैलून में और आप ब्लीच करवाते हैं, वो आपको साइड इफेक्ट कर सकता है, कहीं ना कहीं नुकसान करता है, क्योंकि उसमें जो एक्टिवेटर रहता है वो अमोनिया रहता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत लोग अपने घर में ब्लीच कर लेते हैं और धीरे धीरे स्किन ब्लैक होने लगती है। ज़्यादातर सलून में होता है कि 15 दिन में क्लाइंट आता है और ब्लीच कर दो, ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलती हूँ कम से कम 3 से 4 मंथ आप देख लीजिए उसके बाद। जैसे कोई बोलता है हमको डार्क सर्कल है, तो हम बोलते हैं संतरा, इस समय ऑरेंज बहुत आ रहे हैं, आप लो और उसका जूस निकालो, 1-2 कली संतरे का जूस निकालो, उसमें आप शहद मिलाओ और कटोरी में या बाउल में भर के आप फ्रिज में भी रख दो, कॉटन में लेके आप उसमें डार्क सर्कल में आप अप्लाई करो, पूरे फेस में अप्लाई करो। ये जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। फिर जिनकी ड्राई स्किन हो गई उनको मैं बोलती हूँ आप मलाई ले लो, उसमें शहद मिला लो या एक चुटकी हल्दी उसमें मिला लो, उसको लगाओ, आप एलोवेरा जेल लगाओ। ऐसे बहुत सारी होममेड चीज़ें हैं जिनको मतलब मैं तो अपने क्लाइंट को हमेशा बताती हूँ कि आप ये करिए ये करिए। आप खाना भी बना रहे हो, पका पपीता आपके घर में है, वही आप फेस में लगा लो, आप अपने गर्दन में लगा लो, खाना बना रहे हो फिर अपना फेस धो लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि भी बताने लगेंगे तो
3: जी मैडम, मैडम आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और इतने व्यस्ततम दिनचर्या में भी आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार, थैंक यू सो मच।
0: अब हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर, जिसमें हम लेकर आते हैं कुछ लजीज और हेल्दी व्यंजनों की रेसिपी। आज के व्यंजन में हम सिकंजी मसाला पाउडर की रेसिपी बताएंगे, जिससे आपको सिकंजी बनाने में सोचना नहीं पड़ेगा। ये मसाला आप बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकती हैं और फिर जब मन चाहे आप अलग अलग तरह की सिकंजी, छाछ, लस्सी बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब आइए सिकंजी मसाला बनाते हैं। इसके लिए हमें एक कड़ाही को गैस में रखकर फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अब उसमें 2 टेबलस्पून जीरा भूनेंगे। इसे हल्का ही भूनना है जिससे कच्चापन चला जाए। अब भुना हुआ जीरा एक प्लेट में निकाल लेंगे, साथ ही 2 टेबलस्पून कच्चा जीरा मतलब बिना भुना हुआ जीरा लेंगे। अब 2 चम्मच के करीब साबुत काली मिर्च हम लेंगे। इन सबको ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिए। अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें लेंगे 2 से 3 इलायची और 2 बड़े चम्मच काला नमक, साथ ही 1 चम्मच सफेद नमक जो हम रोज में इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें वो हैं जो डाइजेशन को सही करती हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच के करीब सौंठ का पाउडर और इन सब चीजों को पीस कर एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए और एक एयरटाइट डिब्बे में डालकर स्टोर करके रख लीजिए। बहनों, सिकंजी बनाने के लिए हमें शक्कर को घोलने में थोड़ा परेशानी होती है, तो इसके लिए हम एक पैन में लेंगे 2 कप पानी और 2 कप चीनी। अब इसे गैस पर रखकर एक उबाल आने तक पका लेंगे। फिर ठंडा करके एक बॉटल में कम से कम 1 महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं अलग अलग स्वाद की सिकंजी। सबसे पहले फ्रेश पुदीना के पत्ते लेंगे। अब इसे थोड़ा सा कूट लेंगे। अब लीजिए कांच के 2 गिलास। उसमें पहले डालेंगे आधा आधा नींबू का रस निचोड़कर। अब जाएगा 2 बड़े चम्मच शुगर सिरप जो हमने बनाकर तैयार किया था वो। इसके बाद जो सिकंजी मसाला पाउडर बनाकर रखा था वो 1-1 छोटे चम्मच दोनों गिलास में डाल देंगे। अब जाएंगे कुछ आइस क्यूब्स, फिर जो हमने पुदीने के पत्ते मसल कर रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। फिर 1 गिलास में हम डालेंगे सिंपल चिल्ड वाटर। फिर डेकोरेट कर दीजिए पुदीने के पत्ते और नींबू स्लाइस से। तो हमारी मार्केट स्टाइल सिकंजी बनकर तैयार हो गई। अब जो दूसरा गिलास हमने लिया था उसमें डालेंगे सोडा वाटर और मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेश ठंडी ठंडी सिकंजी बनकर तैयार हो गई। बहनों, अभी आम का सीजन चल रहा है तो गर्मियों में आम का पना हम बना सकते हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमें लू से बचाता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है। तो इसके लिए लेंगे कच्चे आम, उन्हें उबालकर पल्प निकाल लीजिए, फिर पानी डालकर पतला सा घोल बना लीजिए। अब सिकंजी मसाला और आइस क्यूब डालकर ठंडा ठंडा आम का पना बनाकर पी सकते हैं। बहनों, इस गर्मी में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और खुश रहिए। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। अब अंत में एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म है असली नकली।

अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, तो दीजिए इजाजत फिर मिलने के वादे के साथ। अपनी बहन कल्पना को नमस्कार।

श्रोता बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ना उत्तेजना
1: ना शोर दिन रात चोरी चोरी किया ले
0: ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है, भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रामस्वरूप साकेत के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विकास गीत से।

रामस्वरूप साकेत के गाये इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज की पेशकश आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुँचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं फिल्म नोटबुक से लिए गए इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है विशाल मिश्रा और कमाल खान ने।

0: दर्शन रावल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का था और फिल्म थी लूडो। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब।
0: राज्यपाल आर एन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा,
2: शीर्ष नेतृत्व को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। बंगाल में सत्ता का नया सूर्योदय हुआ है और यहाँ पर जंगल राज का अंत हुआ है, गुंडागिर्दी का अंत हुआ है। निश्चित रूप से इस अवसर पर बंगाल के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। कृपया से दोबारा सुन लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा भी जाएंगे, जहाँ वे सरदा धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सरदार धाम परिसर का दौरा भी करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल अपने संसदीय क्षेत्र गुना का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। यह ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। देश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार और 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा रहा है।

0: आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: वहीं रायसेन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने के निर्देशन में आयोजित इस अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद और चेक बाउंस जैसे राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। आज के लिए 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें नमन किया है। आगरमालवा जिला जेल एवं वृद्धाश्रम में कल आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में वृद्धजनों को स्वास्थ्य, पेंशन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। जबलपुर में जिला अस्पताल विक्टोरिया और सरकारी संस्था पार्थ के संयुक्त तत्वावधान में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया कल 10 मई को नीमच में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
5: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
4: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कृषि अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा

0: सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

0: आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रम

0: कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का ये पहला गीत लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर में, संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और महराज जहां ने लक्सर हरिद्वार से, बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। फिल्म सीता और गीता के इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, परमानंद आर्य, अभयानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने। निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय की भी यही फरमाइश है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित और समस्त राजावत परिवार।

आपकी फरमाइश का अगला गीत है हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और उनके परिवार के सभी सदस्य, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली, भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब और उनके सभी साथी, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। साथ ही कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये फरमाइशी पत्र आया है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता का। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह का गाया फिल्म रफ।

0: आपकी कसम, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। आरडी बर्मन के संगीत से सजे इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं प्रमिलागंज आलौड जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। अभिजीत गवहाणकर, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत प्रिंस और एकांश गवहाणकर ने उमर खेड़ महाराष्ट्र से अपनी फरमाइश भेजी है। बहादुरा नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि, परी और गवहाणकर परिवार के सभी सदस्यों की फरमाइश है। तो आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म आपकी कसम का ये गीत।
1: सुनो,
2: कहो,
1: कहा,
2: सुना,
1: कुछ हुआ क्या?
2: अभी तो नहीं।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज में विट्ठल भाई पटेल का लिखा गीत। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बॉबी फिल्म के इस गीत को सुनवाने की फरमाइश गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, अनिल कवचाले, नेहा फड़से, सीमा, सबीहा, कमल, पूजा, नैना, सुषमा, स्मिता और उनके सभी साथी गोमाश्ता नगर इंदौर से। द्वारिका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा ने अपनी फरमाइश दत्रेगी से भेजी है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर की भी यही फरमाइश है।

उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। युवा श्रोता युवाणी कार्यक्रम शाम 5:02 पर सुनेंगे, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। शाम 6:00 आप एक विशेष भेंटवार्ता सुन सकेंगे। आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का दूसरा भाग में आप सुनेंगे साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा और योगदान पर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत। 7:21 का समय ग्राम सभा कार्यक्रम का होगा, जिसमें गीत संगीत और चर्चा तो शामिल ही होगी, साथ ही आप सुन सकेंगे बुंदेली समाचार और 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुना जा सकेगा। रात 8:00 का समय सुर्खियों में कार्यक्रम का रहेगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00 से सुनिएगा, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कलाकार होंगे राजकुमार मजुमदार, आपका संतूर वादन सुना जा सकेगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:15 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त, और ये हैं विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अढ़िया। इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुँचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

ये स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था लैला मजनू।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मनचाहे गीत। मन चाहेगी।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
0: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
0: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
0: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
0: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
0: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाडे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थे क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बट जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं, शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति।

0: थोड़ी रहता है जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्टमास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियां अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियां मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्टमास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गुड़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है। उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाक खाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई शिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है, क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गाँव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई शिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कह रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे।

0: तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
1: श्रृंगारम, श्रृंगारम, उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
0: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
1: अरे कुछ मत पूछो दोस्त,
0: क्यों?
1: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
0: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
1: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
0: तो?
1: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो, पता चल जाएगा।
0: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब, जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
0: अजी बैठिए भी।
2: अरे मारी, भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
0: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
0: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम श्रृंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
0: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
0: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
0: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
0: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम श्रृंगारम को नहीं जानते। जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना।
3: वरना क्या होगा?
4: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
0: हाँ, लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
3: श्रृंगारम, ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
4: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
0: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहां। देखना ये श्रृंगारम

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ, तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: अरे जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओहो समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन शिंगारा? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी ना पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने
0: अरे
1: काम
0: अरे
1: से
0: अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है। और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी

0: जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा ये ले पानी। और अब
0: जी जी इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है यार।
0: अच्छा अच्छा अच्छा बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं तो

0: अरे सामने वो बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है, रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा।
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
2: अच्छा ये बात है?
0: छोड़ दे, छोड़
3: दे मुझे। चेहरा बन गया, तुझे मैं छोर से मार डालूंगा।
1: अरे वाह, दागिये ने मार डाला। अरे बचाओ, बचाओ।
3: यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
1: अरे बकवास बंद करो डाकिये, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चारों हाल उधर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
1: अगर मैं अपने दलबल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई, सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
4: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
4: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
4: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं, और वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
4: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
4: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
4: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब, ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है, लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
5: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
6: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
5: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
6: ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
5: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
6: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
5: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
6: मैं लाता हूँ। दवाई?
5: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
6: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
5: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ,

0: जरा जरा मेरे पास आओ।
1: लो मां।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊँगी।
1: जी,
2: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ।
2: और उससे ज़्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुँच जाऊँगी और गाने भी पेश कर पाऊँगी।
1: क्या बात है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया
1: प्रमिला जी। सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी
2: जी,
1: तो हम तब से बात शुरू करें
2: जी।
1: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला?
2: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
1: जी,
2: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ।
2: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे,
1: जी,
2: ये
1: जी।
2: मेरा नेचर नहीं था।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं
1: जी,
2: उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
1: वाह।
2: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें फिर नाम क्या रखे।
1: हाँ।
2: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके,
1: जी जी जी
2: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज़्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए,
1: हाँ।
2: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला दातार ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ये थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज़्यादा पेश करने का इरादा था उसमें
1: वाह वाह।
2: जी।
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी
2: पहला
1: दादी?

0: जो 1975 14 अप्रैल
1: जी
0: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा
1: बिल्कुल
0: के दिन,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है,
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है,
0: मुहूर्त माना, तो
1: क्या बात
0: हमारे
1: है।
0: एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं, अच्छे
1: हाँ
0: जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है,
1: जी
0: गुड़ी
1: जी
0: पाड़वा।
1: क्या बात है।
0: जी
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
0: हाँ,
1: हैं।
0: फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ, जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्ना दा के साथ गाना था,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि
1: जी
0: मन्ना
1: जी
0: दा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा सांगा कोणा से, वो जो गाना है
1: जी
0: मुझे देखते ही पप्पा सांगा, छोटे बच्चे भी पप्पा सांगा कोणा से। मुझे याद है, छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी,
1: जी
0: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी, 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोना चाहिए, ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे
1: अच्छा
0: बोली
1: अच्छा
0: तुम तो मेरे लिए गाओगी, तो बोले हाँ जरूर
1: ओहो
0: गाओगी।
1: क्या बात
0: बहुत
1: है,
0: मजा आया उस
1: वाह
0: सीन में
1: वाह।
0: बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
0: जी
1: हुआ,
0: जी
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: लिस्ट
1: आपको
0: बनाई
1: याद
0: थी,
1: है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए,
1: जी
0: क्या अजीब दास्तां है ये,
1: हाँ
0: इस
1: हाँ
0: तरह
1: हाँ
0: के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल। जो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ
0: हाँ
1: आपने
0: जी
1: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
0: हाँ जी
1: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
0: जी
1: आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है,
0: राइट।
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो
1: हाँ
0: बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो जो
1: ओह क्या बात
0: आई
1: है,
0: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
1: अलग अलग
0: गाना
1: गायिकाओं ने अलग
0: है।
1: अलग
0: हाँ
1: मौके पे इसे
0: ऐसे
1: गाया
0: मैं मेरे
1: है।
0: शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
1: हाँ
0: अलग अलग
1: हाँ
0: गायिकाओं के गाने हुए,
1: जी
0: उसकी
1: जी
0: झलक
1: हाँ
0: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन
1: जरूर।
0: कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं,
0: जी
1: मेरे
0: जी
1: पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी,
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई,
0: अच्छा,
1: मुंबई,
0: मुंबई में ही,
1: गिरगांव में, गिरगांव
0: गिरगांव,
1: में हमारा रहना
0: जो
1: भी वहाँ
0: खास
1: था।
0: मुंबई की
1: सब
0: जैसे कहा जाए।
1: चाल थे सब
0: जी जी
1: ऐसे,
0: जी जी
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था।
0: हाँ
1: किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जैसे पापड़ बेलना,
0: मिल
1: सब
0: करके सब
1: आती थी,
0: काम
1: सब
0: किया
1: मिलकर
0: करते।
1: काम करते थे,
0: वाह, हाँ
1: बहुत मज़ा आता था। लेकिन पूरा
0: हाँ
1: एक चाल कुटुंब जैसा था,
0: जी
1: और सब सब गणपति दिवाली सब त्यौहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और
0: जी
1: सब
0: जी
1: लोग मज़े कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में 4 आने की चाय कभी नहीं पी जाके,
0: अच्छा,
1: लेकिन
0: हाँ
1: घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर
0: अच्छा
1: में।
0: अच्छा
1: बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को,
0: जी जी
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था, तो
0: हाँ
1: बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था,
0: जी
1: मुझे
0: जी
1: गाने तो पसंद थी मेरी, तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे,
0: अच्छा
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में,
0: अच्छा
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे
0: जी
1: और
0: जी
1: गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे
0: ओ
1: अगर दादर में क्लास होता
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: बहुत ही स्कूल में था, और स्कूल ख़त्म करके अपना क्लास ख़त्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का,
0: अच्छा
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
0: वाह
1: पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई क्योंकि
0: जी
1: वहाँ म्यूज़िक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था
0: हाँ
1: दिल्ली में,
0: हाँ
1: तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा,
1: संगीत शारदा,
0: जी जी
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी,
0: ओ
1: ये मेरी
0: अच्छा,
1: आवाज़ ज़रा भारी थी, जाड़ी थी,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: पुरुष के गायक के लायक थी, और
0: अच्छा
1: हाइट भी अच्छी थी,
0: जी
1: तो मैं
0: जी
1: कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
0: जी जी जी
1: नारद का रोल किया है स्कूल में, तो
0: हाँ,
1: स्कूल
0: चूंकि ये महिला
1: के
0: विश्वविद्यालय है
1: महिला विश्व
0: तो
1: नहीं
0: सारे,
1: वो स्कूल की बात कर रही हूँ,
0: अच्छा
1: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था,
0: अच्छा
1: तो वो हमने उधर किया
0: ओहो
1: यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
0: हाँ,
1: दिल्ली गई यूथ
0: क्या बात,
1: फेस्टिवल के,
0: अच्छा अच्छा
1: बाकी
0: अच्छा
1: फ्रेंड्स वगैरह थे साथ,
0: हाँ हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: मज़ा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था,
0: क्या बात
1: बहुत
0: है।
1: मज़ा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्यपद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर
0: सके?

0: वाह वाह, क्या
1: जितना
0: बात है।
1: लिया था।
0: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब
1: बिल्कुल
0: स्त्रियां
1: बिल्कुल
0: जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी
1: नहीं करती,
0: स्टेज
1: पुरुष
0: मंच पर,
1: लोग
0: तो पुरुष किया
1: स्त्री
0: करते थे,
1: भूमिका
0: जिसके
1: है
0: लिए
1: क्या,
0: नारायण राजहंस यानी
1: बाल
0: बाल गंधर्व
1: गंधर्व
0: जाने
1: जी,
0: जाते हैं,
1: राइट राइट
0: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार
1: जी
0: प्रसिद्ध
1: हाँ।
0: हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के
1: तो
0: लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हो
0: और
1: गया।
0: मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका
1: पुरुष
0: यहाँ
1: भूमिका
0: इस
1: निभाई।
0: नाटक में निभाई थी।
1: हाँ जी
0: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था,
0: जी
1: हम
0: जी
1: हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज़ भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीज़न की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने,
0: हाँ,
1: तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला
0: जी
1: में
0: जी
1: कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियाँ खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले ज़माने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में
0: जी जी
1: दिखाते
0: जी
1: थे,
0: जी
1: अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद, फिल्म
0: हाँ
1: डिवीजन भी चालू है कहीं पता नहीं, शुरू है। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
0: हाँ
1: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में BA किया मैंने
0: जी
1: म्यूज़िक लेके,
0: जी जी
1: तो म्यूज़िक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें BA तक। और BA का वो एग्ज़ाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब
0: हाँ
1: शादी हो गई।
0: अच्छा
1: 42 साल का मेरा जन्म है और
0: हाँ
1: 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
0: हाँ
1: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो BA हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने,
0: जी
1: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है तुम कर रही हो, तो क्यों रोकती हो, MA करो। MA में इंटायर म्यूजिक था
0: हाँ
1: SNDT में,
0: हाँ
1: तो उनकी बदौलत मैं MA करने के लिए गई। वो
0: वाह
1: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी
0: हाँ
1: और बहुत अच्छी तरह से, वो मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक झिझक होती है कि जाओ
0: हाँ
1: कि नहीं, तो उस तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज़्यादा अच्छा संभालती थी
0: अच्छा
1: बच्चों को। तो
0: हाँ
1: 62 में मैंने MA किया फिर,
0: वाह
1: हाँ, और फिर MA किया, और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
0: अच्छा
1: हाँ, तलत साहब के साथ, एक नंदी रुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहाँ पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन
0: हाँ
1: हुआ लायंस क्लब
0: जी
1: का,
0: जी
1: तो नंदी रुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या, हमने चलेगी कूदते
0: दौड़ेगी
1: जाऊंगी कूदते जाऊंगी।
0: जी
1: तो
0: जी
1: तलत
0: जी
1: साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला,
0: क्या
1: 3 महीने
0: बात
1: का वो टूर था हमारा,
0: क्या बात
1: और दो बेटियाँ, एक
0: हाँ
1: चार
0: हाँ
1: साल
0: हाँ
1: की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं
0: हाँ
1: बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से।
0: हाँ
1: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है
0: जी
1: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके
0: जी
1: कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने,
0: अच्छा
1: ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे।
0: वाह
1: बहुत मजा आया
0: क्या
1: टूर
0: बात
1: में
0: है।
1: उनसे वो सीखने को मिला।
0: तलत साहब को
1: और
0: आपने
1: तलत
0: याद किया,
1: साहब तो
0: तो कोई गाना उनका
1: ओ
0: इस वक्त हम सुनाए अपने
1: ओके
0: श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
1: मराठी में गाने थे।
0: जी
1: हाँ
0: जी

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट
1: बड़े
0: इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ गए?
1: वशिष्ठ तरस साहब के साथ गए, फिर
0: हाँ
1: उसी उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी,
1: प्रमोटर अगली बार,
0: हाँ हाँ
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतने अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी जी
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया
0: अच्छा
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ हाँ
1: उनके तो क्या एक किस्से में, अब सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों
0: जी
1: के लिए,
0: जी
1: तो उन्होंने पहले ही शर्त डाल के मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
0: हाँ
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
0: जी जी
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम, तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की
0: जी
1: रेंज और आशा भाई की रेंज, तो
0: हाँ
1: दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके,
0: अच्छा
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था,
0: अच्छा
1: दम मारो दम।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी,
0: जी जी
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते
0: अच्छा
1: थे तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस
0: हाँ
1: किया
0: हाँ
1: उनको,
0: जी जी
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सारे सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहाँ शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी जी
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
0: जी
1: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए
0: हाँ
1: छुट गए फिर मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि अपने तीन चार गाने गा के ये
0: हाँ
1: लोगों को सामने से सुनते बैठूं,
0: हाँ
1: बहुत ही भाग्य था
0: क्या
1: मेरा
0: बात
1: इस बारे।
0: है।
1: रफी
0: पर
1: साहब को
0: किशोर दा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
1: डुएट नहीं गाया
0: नहीं गाया? अगर किशोर दा को याद करने के लिए कोई गीत हम
1: जरूर
0: सुने तो कौन सा
1: जरूर
0: होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है बोले दूसरों
0: मतलब
1: के
0: टीका टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओ हो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी।
1: तो ये जिनको मालूम नहीं है कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं,
0: जी,
1: तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी।
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू, एक छोटा छोटा
0: अच्छा,
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए
0: हाँ
1: थे,
0: हाँ हाँ
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला अभी वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में। मेरी
0: अच्छा,
1: सब सहेलियाँ, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता है,
0: क्या बात है।
1: कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं।

0: मीडिया पर?
1: तो सोशल मीडिया पे,
0: ओहो हो,
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके ज़रिए कि कोई भी गाना हो
0: हाँ
1: वो तुम तुम्हारा करके गाती हो। वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता भाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज़ नहीं जाती, आशा भाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी, पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नहीं आवाज़ जाती है, काली एक, काली पाँच, काली एक तक
0: हाँ हाँ
1: जाती है,
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक का।
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा, करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
0: ओहो
1: हारमोनियम पे सिर्फ
0: क्या बात है।
1: भेजे।
0: अच्छा
1: कभी
0: अच्छा
1: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
0: जी
1: साथ
0: जी
1: गाए,
0: जी
1: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
0: जी
1: मुझे भी
0: जी
1: अच्छा लगता
0: हाँ, तो
1: है।
0: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
0: अच्छा अच्छा
1: याग्निक का एक गाना गाया है शायद, अलका
0: हाँ हाँ
1: याग्निक का,
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोमो के धागे दम लगा कर है शायद इस फिल्म का
1: दम
0: गाना
1: लगा के
0: है।
1: है
0: जी
1: उसका
0: जी गीत
1: पे,
0: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
1: हाँ
0: हारमोनियम पे,
1: मोह
0: तो
1: मोह के है। और
0: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: हैं, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: जरा
0: है,
1: से
0: ये
1: गाती थी
0: आपका हमेशा से रवैया रहा
1: या
0: है क्या?
1: नकल नहीं किसी
0: नकल
1: की,
0: किसी की
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं किया आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी गीता
0: हाँ,
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद
0: आशा
1: हैं
0: जी का
1: गीता।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज
1: हाँ
0: में भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुरकी या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से, तो
0: जी,
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता।
1: नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, उस
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कोई,
1: जाके फिर वो आवाज
0: बिल्कुल
1: डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: हूँ
0: अनुभव
1: क्योंकि
0: आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी
1: आई
0: जी
1: हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा नहीं
0: हाँ
1: होना
0: हाँ
1: चाहिए, कुछ सीखो अच्छी तरह से, तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है, नहीं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही लता
0: बिल्कुल
1: मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे हो
1: गली
0: जाते,
1: चौड़े में
0: क्या बात है। तालीम बहुत ज़रूरी है,
1: जी,
0: क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: ज़रूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3 4 5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, वो जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकुतें, फिर अपने गले से, नहीं तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
0: हाँ
1: नॉट, मैं
0: हाँ
1: अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है,
0: जी
1: समझो
0: जी
1: वराइटीज
0: हाँ
1: वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: हिसाब
0: पहले वो तो
1: ओरिजिनल वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज़ की तैयारी भी हो जाती है,
0: हाँ
1: और वो हिसाब से बहुत ज़रूरी है,
0: बिल्कुल,
1: आवाज़ अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
0: हाँ हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: मुझे लगता है, पता नहीं अभी
0: खैर बिल्कुल सही।
1: है तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गंवाई तपस्या में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: क्यों करते थे इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे गाते थे ना
0: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं,
1: जी,
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
1: मन्नादा के
0: किया,
1: साथ कहा
0: संगीतकार थे श्री
1: श्री
0: रामचंद्र,
1: रामचंद्र,
0: तो मन्नादा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए?
1: एक शो किया बड़ौदा में,
0: अच्छा,
1: हाँ
0: हाँ
1: बड़ौदा में, मन्नादा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज़ में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
0: हाँ हाँ
1: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है,
0: जी,
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो
0: हाँ
1: फ्लैट लगेगा और उस
0: जी,
1: भाव नहीं आएंगे उसमें,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज़ में नहीं था, किसी के आवाज़ में जाता होता है किसी के आवाज़ में, तो मैंने मन्नादा को पूछा कि मन्नादा ये कैसा लाने का अपने आवाज़ में,
0: हाँ
1: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ, और मेरे
0: अच्छा,
1: आवाज़ में अपने आप आ गया वो सब
0: ओहो
1: रियाज करके,
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा, फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि ज़्यादा नहीं करना,
0: हाँ,
1: लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज़ में बहुत ही,
0: अच्छा,
1: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
0: जी जी
1: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
0: हाँ
1: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
0: जी जी
1: बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से, बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी, ये
0: हाँ
1: शील सजणे सजणे
0: हाँ
1: माझाच पाठी,
0: बिल्कुल,
1: ये
0: उनके
1: लाइन
0: लिए
1: थी,
0: टंग ट्विस्टिंग
1: बहुत
0: रहा हो
1: बहुत 3 बार हुआ ठीक, 4 बार हुआ, इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो
0: जी,
1: उन्होंने
0: हाँ
1: वो नीचे डाट वगैरह देते हैं वो
0: हाँ
1: उनको
0: हाँ
1: बराबरी
0: नुक्ता लगा
1: करके
0: के,
1: लाइन
0: क्यों
1: में,
0: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दें हमें?
1: हाउस ऑफ बैम्बू
0: जी,
1: नंबर 54, द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54, द हाउस, दिस इज मॉड्यूलेशन
0: हाँ
1: फॉर द, कि उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है,
0: जी,
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द

0: बांबू डोर हो, बांबूचे घर बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळी शार, बांबूचे घर बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळी शार, बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला, झुलवित राहील पापा पापा तुला आणि मला. नंबर 54 है द हाऊस ऑफ द बांबू डोर, नंबर 54 द हाउस ऑफ द बांबू डोर.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर.
0: उनका तो क्या,
1: वाह वाह. मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं.
0: जी जी जी.
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है.
0: हाँ.
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए, जो लाइट कम और क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने.
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं.
1: बहुत सी
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उस पर बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन.
1: वाह,
0: बहुत अच्छा. थोड़ा सुना था.

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो
0: जी
1: एक
0: बिल्कुल
1: अंतरा
0: बिल्कुल,
1: है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से
0: सीने से
1: लग
0: लग जाता
1: जाएगा
0: है
1: तो,
0: तू
1: और कभी नन्ही सी बेटी बन के
0: बनके।
1: याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छी
0: बहुत बहुत ही
1: लिखावट भी,
0: संजीदा गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते संगीतकार।
0: जी जी जी प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको
1: जी
0: मंच पर गाने का मौका
1: जी
0: मिला
1: जी
0: है। हम रफ़ी साहब को अभी याद करते हैं, रफ़ी साहब के साथ
1: रफ़ी
0: आपकी
1: साहब तो
0: यादें।
1: मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट
0: अच्छा
1: कॉर्नर है। उनके
0: अच्छा
1: उनके साथ बहुत सारे टूर किए,
0: हाँ,
1: साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडिल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफ़ी
0: ओहो
1: साहब के
0: क्या
1: साथ।
0: बात। हाँ
1: और जो उनसे सीखा है ना,
0: जी जी
1: मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी।
0: ओहो
1: हाँ, इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव।
0: वाह
1: और उनको किसी ने सवाल पूछा है,
0: जी,
1: पत्रकार परिषद थी,
0: हाँ हाँ
1: कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है,
0: जी
1: लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते?
0: जी
1: तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना,
0: हाँ,
1: उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और
0: ओ
1: क्या करूँ, और किसी
0: क्या
1: का
0: बात,
1: किसमें हाथ क्यों डालूँ मैं।
0: विनम्रता की हद है।
1: हद है, हद है।
0: ओ हो,
1: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: वो
0: जी
1: कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है,
0: हाँ
1: तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें
0: हाँ
1: तान भी थे, तो वो गाया, तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी जी
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफ़ी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी
0: जी, क्या बात,
1: है
0: वाह वाह।
1: बहुत अच्छा
0: अब
1: लगा
0: रफ़ी साहब के इतने सारे गाने हैं,
1: जी।
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद है?
1: ज़्यादा पसंद नहीं बोलूँगी, सबसे
0: हाँ
1: सब पसंद, कि ये जो गाना है उनका, तुम जो
0: विक्टोरिया
1: मिल
0: नंबर
1: गए हो,
0: 203।
1: हाँ,
0: हाँ जी हाँ जी
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी जी
1: हाँ,
0: हंसते
1: हंसते
0: जख्म,
1: जख्म,
0: जी जी
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: हंसते
1: और
0: जख्म फिल्म
1: हाँ
0: का, जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: सभा की शुरुआत में न्यूज हेडलाइंस हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे और उसके बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख रेल मार्गों की क्षमता को बढ़ाना और भीड़भाड़ कम करना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश भर में आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है।

पढ़ाई सभी के लिए जरूरी है, लेकिन पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं होता, और ये कोई मॉडर्न विचार नहीं है। ये विचार रविंद्रनाथ टैगोर के हैं, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारें मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महान कवि, लेखक और चिंतक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन शिक्षा के क्षेत्र में है। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार शिक्षा बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का विकास करनी चाहिए, उसकी बुद्धि, भावनाओं, कल्पना शक्ति और शरीर का। टैगोर जी कहते थे कि बच्चा प्रकृति से सबसे ज्यादा सीखता है, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां कक्षाएं खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छाया में होती थी। बच्चे वहां गाते, खेलते, नाचते और प्रकृति को निहारते हुए सीखते थे। वो मानते थे कि जब बच्चा खुश और स्वतंत्र होता है, तभी उसमें असली सीखने की इच्छा जागती है। उन्होंने पुरानी रट्टा मार शिक्षा की बहुत आलोचना की। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को कारखाने की उपमा दी, जहां बच्चे मशीन की तरह तैयार होते हैं। टैगोर चाहते थे कि शिक्षा बच्चे की रचनात्मकता को बढ़ाए, इसलिए उन्होंने संगीत, कला, नृत्य, हस्तकला और साहित्य को शिक्षा का अहम हिस्सा बनाया। टैगोर के अनुसार शिक्षक बच्चे का मित्र और मार्गदर्शक होना चाहिए, न कि डराने वाला। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि बच्चे को संवेदनशील, स्वतंत्र और अच्छा इंसान बनाना है। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां भारत और विदेशों की संस्कृतियों का सुंदर मेल हो और पूरा विश्व एक परिवार बनकर रहे। आज के समय में भी टैगोर का शिक्षा विचार बहुत प्रासंगिक है। हमारी स्कूलों में बच्चे हैवी बैग और टेंशन लेकर के जाते हैं। टैगोर हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा का मतलब बच्चे को स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना, उसकी जिज्ञासा को जगाए रखना और प्रकृति से जोड़ना है। टैगोर का मानना था कि सच्ची शिक्षा वो है जो मनुष्य को पूर्ण बनाती है, उसे स्वतंत्र सोचने की शक्ति देती है, पूरे विश्व के प्रति प्रेम सिखाती है और संवेदनशील बनाती है। इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं के और सलीम मर्चेंट की रूहानी आवाज में आशाओं से भरा ये गीत।

0: दोस्तों, अभी थोड़े समय पहले 10th 12th का रिजल्ट आया और मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप दी गई। इसी तरह राज्य और केंद्र सरकार स्टूडेंट्स की पढ़ाई ना रुके और प्रोत्साहन के लिए उन्हें हमेशा सहायता राशि देती हैं। ऐसी ही भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम यशस्वी। इस योजना के बारे में और जानते हैं सिपाली मिश्रा से।
1: नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया मतलब प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना फॉर वाइब्रेंट इंडिया के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। यह योजना उन मेधावी छात्रों के लिए है जो ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति समुदाय से आते हैं। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के होनहार बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और देश के विकास में अपना योगदान दें। सरकार चाहती है कि कोई भी योग्य छात्र पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर न हो। पीएमएसएसवी एक छात्र योजना है जिसमें कई छोटी योजनाएं शामिल हैं, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाई के लिए, टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई के लिए, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना इसमें शामिल है। छात्रवृत्ति की राशि कक्षा 9वीं के छात्रों को 75,000 प्रति वर्ष मिलती है और कक्षा 11वीं के छात्रों को 1,25,000 प्रति वर्ष मिलती है। यह राशि ट्यूशन फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, हॉस्टल फीस और अन्य पढ़ाई संबंधी खर्चों के लिए दी जाती है। टॉप क्लास एजुकेशन में और भी ज्यादा सहायता मिल सकती है, लेकिन बात यह भी है कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो। इसलिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी ये है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी वर्ग से होना चाहिए, परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, स्टूडेंट कक्षा 9वीं या 11वीं में सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहा हो, लेकिन मेरिट के आधार पर चयन होता है। पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था, अब कई जगह पिछले क्लास के मार्क्स 60% या उससे ज्यादा के आधार पर चयन होता है। लेकिन आवेदन कैसे करें? तो दोस्तों, आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है। छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड और पिछले क्लास की मार्कशीट अपलोड करने होते हैं। समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में या आसपास कोई योग्य छात्र है तो इस योजना का लाभ जरूर दिलाएं। इसी के साथ मैं सिपाली मिश्रा विदा चाहूंगी। धन्यवाद
0: दोस्तों। अभी आप सिपाली मिश्रा को सुन पा रहे थे जिन्होंने आपको योजना के बारे में बहुत जरूरी जानकारी दी। लेकिन ये योजना सिर्फ पैसा देने की नहीं है दोस्तों, ये योजना उन बच्चों को आत्मविश्वास देती है जो मेहनती हैं लेकिन संसाधनों की कमी से पीछे रह जाते हैं। इससे स्कूल ड्रॉप आउट दर कम होगी, लड़कियों की शिक्षा बढ़ेगी और देश में कुशल युवा तैयार होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा योग्य छात्र है तो उसे इस योजना का लाभ जरूर दिलवाएं, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो गरीबी और पिछड़ेपन को मिटा सकता है। सरकार ने संसाधन दिए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही तरीके से उपयोग करें। पीएम यशस्वी योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जो न सिर्फ व्यक्तिगत विकास करता है बल्कि पूरे देश को वाइब्रेंट इंडिया बनाने में मदद करता है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि अब किसी की पढ़ाई रुके नहीं, चलती रहे। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ए आर रहमान और श्रीनिवास की मिली जुली आवाज में ये गीत।

दोस्तों, क्या आपने कभी फूल के बर्तनों के बारे में सुना है? कई लोगों को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें ये बता दें कि फूल के बर्तन फूलों से नहीं बनते। मतलब ये किसी फ्लावर से बने हुए बर्तन नहीं होते, ये बर्तन धातुओं से बनते हैं। तो हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी विरासत में हम आपको बताएंगे फूल के बर्तनों के विषय में, जो कि आज फिर से चलन में है। आज बीमारियां बढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने पीतल के बर्तनों में खाना बनाना फिर से चालू कर दिया है। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग फिर से बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है। इसी तरह से फूल के बर्तन भी हैं, जो अभी से कुछ समय पहले तक सिर्फ परंपरा के तौर पर शादियों या फिर शुभ मांगलिक कामों में ही इस्तेमाल किए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के सतना जिले की उचहरा तहसील कांसे के बर्तन बनाने को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ से कांसे, पीतल, फूल धातु के बर्तन कई राज्यों के साथ विदेश तक जाते हैं। इन बर्तनों में हांडा, बटुई, बटुआ, लोटा, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच सभी शामिल हैं। ज्यादातर इन बर्तनों का उपयोग पूजा पाठ, शादी ब्याह जैसे शुभ काम और घरेलू उपयोग में किया जाता है। पूर्वजों के जमाने में ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्रों में लोगों के घरों में यही बर्तन पाए जाते थे। वहीं इन विरासत को आगे बढ़ाने का काम उचहरा तहसील के बर्तन बनाने वाले आज भी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ जानकार बताते हैं कि इन बर्तनों में खान पान करने से कई प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ये फूल की धातु बनती कैसे है, आपको ये बताते हैं। तो दोस्तों, फूल टिन और लेड की मिश्र धातु है, पर इसमें कभी कभी तांबा या पीतल भी मिला रहता है। ये धातु उजली और स्वच्छ चांदी के रंग की होती है और इसमें रखने से दही या खट्टी चीजें नहीं बिगड़ती। भारत, चीन, मिस्र और यूनान जैसे देशों को फूल और कस्कुट जैसी धातुओं का ज्ञान बहुत पुराने समय से है, और प्राचीन खंडहरों की खुदाई में इनके पात्र, हथियार और मूर्तियां

0: भी पाई गई हैं। पश्चिमी देशों में फूल से मिलती जुलती मिश्र धातु को प्यूटर कहते हैं। एक समय फूल के पात्रों का उपयोग प्रतिष्ठा सूचक समझा जाता था और इनका निर्माण अनेक देशों और नगरों में होता था। भारत में फूल का अस्तित्व पीतल से पुराना है। यहाँ इसका उत्पादन व्यापक रूप से होता था, पर आज स्टेनलेस स्टील के बनने के कारण इसका उत्पादन बहुत कम हो गया है और दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। गांवों में भी फूल के बर्तनों का विशेष प्रचलन है और भारत के अनेक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल में इसका उत्पादन होता है। अच्छा फूल बेधा कहलाता है। साधारण फूल में 4 भाग तांबा और 1 भाग टिन होता है, लेकिन बेधा फूल में 73 भाग तांबा और 27 भाग टिन का होता है और कुछ चांदी भी पड़ती है। ये धातु बहुत खरी होती है और चोट लगने पर चट से टूट जाती है। इसके लोटे, कटोरे, गिलास, बहुत से बर्तन बनते हैं। फूल कांसे से बहुत मिलता जुलता है, पर कांसे से इसमें ये भेद है कि कांसे में तांबे के साथ जस्ते का मेल रहता है और उसमें खट्टी चीजें बिगड़ जाती हैं। फूल में 80% तांबा और 20% टिन रहता है। धातुओं के विभिन्न मात्राओं के कारण इनके रंग और गुणों में भी विभिन्नता पाई जाती है। नीली आभा लिए ये सफेद होता है। प्राचीन काल में गिरिजा घरों के घंटे इसी के बनते थे। बाद में और भी सामान बनने लगे। दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी में तो इसका उपयोग बहुत व्यापक हो गया था और उस समय या उससे पहले के बने अनेक सादे और सुंदर चित्रित प्याले, कलश, गिलास, सुराही, फ्लावर पॉट और थाल जैसे भी कई सामान पाए गए हैं। वहीं अगर हम कसकुट की बात करें तो कसकुट तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। कसकुट के सामान भी वैसे ही बनते हैं जैसे फूल और पीतल के। दोस्तों, मध्य प्रदेश के फूल के बर्तनों को GI टैग भी मिला है। तो हमारी विरासत में आज इतना ही, और अब आपको सुनवाते हैं ऋचा शर्मा, महालक्ष्मी, वैशाली और शोमा की खूबसूरत आवाज में ये गीत।
1: डुम डुम डुमक कडम डम डमक डुम डुम डुमक कडम डुम डुम डुम डुमक कडम डम डमक डुम डुम डुमक।

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 5:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है

आम्रपाली फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल शैलेंद्र के थे और संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बारात से, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त और आवाज़ मुकेश की।

सनी फिल्म का ये नगमा आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत आनंद अक्षी का था और संगीत आर डी बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में है, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त, फिल्म का नाम है ऊंचे लोग।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गोविंद मुनीस की रचना आपने सुनी। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ थी और फिल्म का नाम आंसू बन गए फूल। ये गाना शोला और शबनम फिल्म का है, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, कैफी आज़मी के बोल, खयाम का संगीत।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जबलपुर है। आपको याद दिला दें, इस सभा में 6:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से लिए कुछ देशभक्ति तराने। राम सेवक श्रीवास्तव के गाए बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं कीर्ति राजपूत। 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज के कार्यक्रम लोकगीतों की गम्मत पर आधारित होगा। रात 8:00 सुर्खियों में ये कार्यक्रम भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं रात 8:15 से। ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:00 को है समाचार। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अभियुक्त दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल R.N. रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव M.A. Baby ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉ. APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRY ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr.

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में समीर के बोल अभी आपने सुने। आवाजें थी उदित नारायण, शंकर महादेवन, महालक्ष्मी और डोमनिक की। फिल्म 10 का ये देशभक्ति नगमा अभी आपने सुना। आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे थे फिल्मों से लिए कुछ देशभक्ति तराने।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:20 होने को है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः। तेन सह

0: अन्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडुराज्ये नूतनसर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+% विधायकानां समर्थनं वर्तते। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे ही देशे विवादानां सौहार्दपूर्णरीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबेगो देशस्य प्रधानमंत्रिणा सह मेलनं साधितवान्। अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15-वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रविः श्री शुभेंदु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+% विधायकानां समर्थनं वर्तते। 34-200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18-100 विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जी सेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70+100 भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 विधायकाः सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं 2-2 विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य संपूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्री पाण्डेयः अवोचत् यत् 23-2000 25-2000 यावत् 12 राष्ट्रिय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित है, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर अकरोत् त्रिनिदाद टोबेगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां

0: मन्त्रालयस्य समारोहे डॉक्टर जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ सांस्कृतिक संबंधानां अथ ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबेगो अमुना सह परंपरागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः संबंधाः वर्तन्ते। उभयोः देशयोः जनाः वेशभूषां क्रीडां आहार व्यवहारं च समेत्य परंपराः यावत् नैकेषु विषयेषु साम्यं संददते। डॉक्टर जयशंकरेण प्रधानमन्त्रिणा कमलाप्रसाद विशेषवर्येण सह मेलनं विधाय द्विपक्षीय सहयोगं इतोपि सुदृढीकर्तुं चर्चा कृता। यात्रावधौ पर्यटनं विदेश कैरिकॉम मंत्रालय भवनस्य सौरोर्जा संचालनं विविध परियोजनाः अथ च आयुर्वेद केन्द्रस्य स्थापनां समेत्य नैकेषु विषयेषु सहमतिः जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः कर्नाटकस्य बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद नगरे प्रायः 9,500 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां राष्ट्रीय राजमार्गस्य चतुः भागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री वारंगल स्थले पीएम मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्री मोदी हैदराबाद अत्याधुनिकं कर्करोगपरं चिकित्सालयमपि लोकार्पयिष्यति। अद्य गुरुदेवस्य रवींद्रनाथ ठाकुरस्य 65वीं जयंती वर्तते। दिनमिदं उपलक्ष्य शान्तिनिकेतनं विश्वभारती विश्वविद्यालयं अथ बांग्लादेशं समेत्य जगतः अनेकेषु स्थलेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः समायोजिताः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः अथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः पोचिशे बोईशाख इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च केवाईसी मानकानां उल्लंघनमुद्दिश्य हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस सहैव यस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। पृथक पृथक वक्तव्येषु भारतीय रिजर्व बैंकेन सूचितं यत् तेन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः प्रस्थापितः। अपरत्र यस बैंक इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः आरोपितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी 5 दिवसेषु केरलम राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रचंड वायुना च सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन अद्य राज्यस्य 9 जनपदेषु पीतवर्णीया संचेतना अपि प्रसारिता। श्वः अपि संचेतना तावत् 7 जनपदेषु यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्यजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीपतटेषु गमनपरिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्णाटकतटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं 7:30 जयपुरनगरे आरप्स्यते। अवधेयं यत् अंकतालिकायां राजस्थान दलं चतुर्थे, गुजरात दलं च पंचमे स्थाने स्तः। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राम सेवक श्रीवास्तव के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राम सेवक श्रीवास्तव के गाए बुंदेली लोकगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं कीर्ति राजपूत। इनके स्वर में पहले आपको सुनवा रहे हैं भजन।

कीर्ति राजपूत की आवाज में मीराबाई रचित यह भजन अभी आपने सुना। आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं कीर्ति राजपूत की कई रचनाएं।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 7 बजने को है समाचार। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी

0: घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Shudhiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. The newly elected MLAs of the West Bengal Legislative Assembly will take oath on the 13th of May. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP

शिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर, सोमवार को सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं।

0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर में आयोजित होगा रजत जयंती समारोह। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: यह उत्सव सोमनाथ मंदिर की अमर विरासत को सम्मान देने के लिए मनाया जा रहा है। यह समारोह वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले दर्ज हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर को दर्शाता है। साथ ही यह 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। सदियों से सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और इसे लूटा गया, लेकिन हर बार भक्तों और शासकों ने इसे दोबारा बनाकर इसकी खोई हुई महिमा को वापस स्थापित किया। यह उत्सव इस महीने की 11 तारीख को मंदिर के शिखर पर होने वाले भव्य कुंभ अभिषेक के साथ समाप्त होगा। इस अनुष्ठान में 11 पवित्र तीर्थस्थलों से लाए गए जल का उपयोग किया जाएगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तनिया, निशिद प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही आज से सुशासन, सुरक्षा और विकास के एक नए युग का शुभारंभ हो गया है।
2: बंगाल सच में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई।
0: सीजन 2028 में श्रद्धालुओं की सुगमता से स्नान के लिए छिपरा तट पर 29 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नवीन घाट निर्माण किए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह ने आज करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र में नदी के किनारे पैदल भ्रमण करते हुए घाट तक पहुंचने के प्रस्तावित 30 मार्गों का चिन्हांकन किया। संभागायुक्त आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन घाट तक बनने वाले पहुंच मार्ग सुगम और सुव्यवस्थित हों। संभाग आयुक्त ने बताया कि
3: आज के दिन हमारे और हमारी टीम के द्वारा सुबह 6 बजे से निकलकर लगभग 6 किलोमीटर का एरिया जो है कवर किया गया है महाशत्रा के किनारे किनारे। और आज के भ्रमण का उद्देश्य है कि जो हमारे 29 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं, उन 29 किलोमीटर के घाटों तक श्रद्धालु किस किस पॉइंट से एंट्री लेंगे, जिससे कि श्रद्धालुओं को सहूलियत भी हो और सभी घाटों का अच्छा प्रयोग भी हो और हमारी जो रोड्स हैं जो घाटों तक लेके आ रही हैं वो आसानी से श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचा सके। तो लगभग 200-200 मीटर पर हम लोग एंट्रीज बना रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज

0: अमेज़न AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस अवसर पर श्री चौहान मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई 2100 किलोमीटर से अधिक होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य की 987 बस्तियों को लाभ होगा। प्रदेश भर में आज आयोजित लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। भोपाल, रायसेन सहित अन्य जिलों में भी आयोजित लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के सरचार्ज में 100% तक की छूट का लाभ दिया गया। प्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के प्रयासों को गति मिली है। इसी क्रम में मणिया ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत सागर जिले के राहतगढ़ विकासखंड के 131 ग्राम, जैसी नगर के 145 ग्राम, सागर ब्लॉक के 26 ग्राम तथा रायसेन जिले के बेगमगंज विकासखंड की 15 ग्रामों सहित कुल 317 ग्रामों को शुद्ध पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भोपाल में आयोजित होने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी भोपाल के कुल 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये सीरीज 15 मई से 20 मई तक खेली जाएगी, जिसमें देश और विदेश के युवा खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं झाबुआ में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने लोगों को तेज गर्मी व लू से बचाव हेतु सावधानी बरतने की सलाह दी है।
2: बढ़ती गर्मी के कारण लू एवं शरीर में पानी की मात्रा कम होना जैसे मरीज जिले के स्वास्थ्य संस्था में बढ़ रहे हैं। यदि आपको बुखार, उल्टी, दस्त, सरदर्द या पेशाब में जलन जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो ये लू अर्थात हीट स्ट्रोक होने की संभावना अधिक है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को जिनको लू से खतरा अधिक है वो दोपहर में धूप में ना निकले, अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी, छाछ, नींबू पानी जैसे पदार्थों का सेवन करे।
1: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती। इस अवसर पर विश्व स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबेगो की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबेगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। खंडवा में जल संरक्षण और नदी संवर्धन को जन आंदोलन, कल आबना नदी तट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया गया है। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांचें भी निःशुल्क की गईं। आगर मालवा में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 7:20 हुए हैं, अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने बारे सभी किसान भैया बहनों से प्रभा बहन की राम राम। किसान भैया हरो, आज तो ऐसी उम्दा बात है हमारे इतिहास के जो न इतिहास की धरोहर के प्रणेता हैं उनकी आज जयंती है। अब आप जानियो के कौन की बात हम कर रहे हैं इन पंक्तियों में के सालों साल बाद जब आबे जो संजोग कहाबे देखे जन्म धन्य भई माता महाराणा सुत पावे पुण्य कर्म को उदय पिता को सुत पाखे जस गावे जो इतिहास अमर कर जावे शील प्रताप कहावे। हाँ भैया, सो आप उन्हें जाने गए हुए कि आज है महाराणा प्रताप जी की जयंती और अपन और सब इतिहास में उनकी जयंती ऐसे ही नहीं मनाते हैं कि आज उनको जन्मदिन बहुत तो सो उनकी जयंती मना रहे। हाँ, जा तो अपन सिर्फ इसे मना रहे के जो उनको आ जाए के रोज जन्म भाव वो में बल्कि इसे जयंती मना रहे कि उनने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़वे के लाने स्वाभिमान की रक्षा करवे के लाने और सबसे बड़ी बात अपनी मातृभूमि के लाने सर्वोच्च बलिदान देवे के जो प्रेरणादायी है वे बलिदान के प्रतीक बन गए हैं। ऐसे महाराणा प्रताप को उनकी वीरता को नमन करवे के लाने अपन जा उनकी जयंती मना रहे और जैसे महाराणा प्रताप को जीवन वीरता त्याग और दृढ़ निश्चय की मिसाल बनो ऐसा ही वे पूरे भारतीयों है प्रेरणा दे गए हैं और भारतीय इतिहास में अमर हो गए हैं और हमेशा अमर रहे हैं। सो भैया ऐसो है कि उनकी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे किसान भैया बहने जानते ही हैं और कछु जाने नहीं जाने सो हम खबर करा दे रहे हैं। कैसे कि महाराणा प्रताप को नाम तो कोई की जुबान से भुलाओ नहीं भूलत यार, कोई के अभी कह दो बिल्कुल अंधाधुंध वो जान जाए कहाँ राजस्थान में हते महाराणा प्रताप। तो भैया हम बता दे रहे हैं आप औरों के सिलसिले से जिनमें खबर हो जाए, कछु बातें तो खबर रहती कछु जनों ने पढ़ो सोई है किताबों में सोई पढ़ो है और कविताओं में सोई पढ़ो है मनो हम जा जरूर के हैं भैया के इतिहासों में थोड़ो मोड़ो अंकित कहूँ लड़े राणा किंतु समय साक्षी है देखो डटकर युद्ध लड़े राणा। तो बहुत ही ज़्यादा डट के युद्ध करवे बारे अपने जो ने महाराणा प्रताप जी थे वे 9 मई 1540 में जेठ महीना की शुक्ल तृतीया को उनको जन्म भाव तो राजस्थान में कुंभलगढ़ में और उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता थी उनकी रानी जयवंता कुंवर और बचपन को नाम उन्हें की का आप जैसे छोटे में नाम नहीं रख लेते आए उनके दोस्त भाई उनके भैया बहनों ने उनके घर के सयानों ने की का कह वो शुरू कर दो और उनको वंश आए राजवंश सिसोदिया राजपूत और उनकी जो बात है स्वाभिमान की जो कछु बातें ऐसी हैं कि भाई मेवाड़ के लाने तो महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करवे से बिल्कुल साफ इनकार कर दो तो और राजपूताना के कई अन्य राजाओं से ने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी मनो उनने नहीं करी थी। देखो जो अपनी अधीनता स्वीकार करवे से बिल्कुल एक चित्त ना ही कर देते हैं और बिल्कुल स्वीकार करते ही नहीं है वे डट के लड़त हैं और लड़त लड़त भलाई भी अमर ताकि प्राप्त हो जावे मानो उनको नाम इतिहास में अमर हो जाते हैं। जैसे झांसी की रानी ने कह दी थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी ऐसे ही महाराणा प्रताप ने कह दी थी मैं अपना मेवाड़ नहीं दूंगा और मैं अकबर की अधीनता तो स्वीकार कर ही नहीं सकता मुगलों की तो

माने अधीनता स्वीकार कर ही नहीं सके, मुगलों को राज हम राज मानते ही नहीं है। और दूसरी बात जा है कि जब वे लड़बे के लाने ठाणे भय, तो जब उनने देखो कि सब तरफ से भी हरा देते अकबर की सेना है, तो कछु दिनों बाद इकट्ठे होकर अकबर की सेना बहुत ही मुतकी, कई गुना सेना यानी महाराणा प्रताप की सेना से कई गुना ज़्यादा सेना हती। तो असोई हल्दी घाटी में भी ऐसो युद्ध लड़े, ऐसो युद्ध लड़े कि कोई भुलाए नहीं भूल सकते आए हल्दी घाटी को युद्ध 1576 में भाव। तो जो युद्ध कौन जमाने में बताओ, कितनी सदियां बीत गई मनो। आज लो बिल्कुल ऐसो जब अपन पढ़त है नहीं तो ऐसो समझ में आते है कि हमारे कवियों ने तो इतनी उम्दा कलम चलाई है कि ऐसो रख देते हैं बिल्कुल चित्र जैसे सामने से अपन युद्ध ही देख रहे हों, है नहीं। हल्दीघाटी के युद्ध की बात अगर करें तो वह घटना कोई हिंदुस्तानी कोई भूल नहीं सकते है। और जो युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन को सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, तो जय युद्ध में मुगलों की विशाल सेना और प्रताप जी की छोटी सी सेना ऐसी युद्ध लड़ी तो असुई जीत गई। माने जीत भी कोई ऐसो कहें कि भी जख्मी हो गए थे और दूर हो गए थे युद्ध से, मनो फिर भी उनने हार नहीं मानी है। और उनको जीवन पूरे संघर्षपूर्ण जीवन रहो, युद्ध के बाद भी वे उनने घुटना नहीं टेके अकबर के सामने। उनने बरसों तक अरावली की गुफाओं में रह कर और घास की रोटियां खा कर मुगलों के संग छापावार युद्ध करत रहे। और उसके बाद उनने कछु जगह पे मेवाड़ के कछु क्षेत्रों में उनने चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़ के छोटे मोटे और भी जो गढ़ हाते उनमें सब में उनने अपनो अधिकार फिर से स्थापित करके ही माने भी। सो ऐसे महान महाराणा प्रताप की बात अपन अब और भी कर हैं, मानो आज तो है गम्मत भैया, तो आप और ऐसो लग रहा हुआ कह प्रभा बहन तो महाराणा प्रताप की बातों में ऐसी खो गई, मानो भैया देखो आप और ऐसी खो गए हुए। सो आप जाग जाओ और अब अपनी गम्मत शुरू कर रहे हैं अपन, तो ले जो पहलो गीत आज की गम्मत को।

हाँ, तो किसान भैयारो देखो, गम्मत में जोन 25 अप्रैल 2026 को अटका बोलूगा, तो जो को अटका को उत्तर शामिल करने हैं, 15 दिन हो गए हैं, के काकी के कान कक्का के कान ही नहीं है, काकी चतुर सुजान कक्का कछु जानत नहीं है। तो भैया हरो ये को उत्तर है कढ़ैया और तवा, काहे से कढ़ैया के दो कान होते हैं और कढ़ैया में बरन बरन की चीज़ें बनती हैं, चाहे मिठाई बना लो, चाहे पूड़ी बनवा लो, चाहे हलवा बनवा लो, चाहे भजिया बनवा लो, चाहे रेहन रांध लो, चाहे जे कछु भी करने हैं सो कढ़ैया में सबई कछु बन सकत, मनो तवा में का है अकेले रोटी और के पराठा, सो ज़्यादा कछु भी जानत नहीं है तवा। तो ऐसी आ जा कढ़ैया और तवा, तो जो उत्तर भाव। और अब आज को उत्तर, आज को अटका सोई लिख लो, सब कोई कागज पेन लेके बैठे ही होंगे, हमारे किसान भैया आ रहे, बिल्कुल चतुर सुजान है वे, सोई वे जानत हैं कि गम्मत में कोई ना कोई अटका लेके आए हैं प्रभा बहन। तो हम आज अटका लेके आए हैं, 4 परदेशी 16 नारी, अलग अलग है नाव, हमरो अटका बूझ बताइयो, बाद में जाइयो गाँव। तो भैया फिर से हम अटका बोल रहे हैं, सुन लो हो तो दोहरा लो, लिख लो लिखला हो तो, और नहीं तो फिर से लिख लो अच्छे से। 4 परदेशी 16 नारी, अलग अलग हैं गाँव नाव, 4 परदेशी 16 नारी, अलग अलग हैं नाव, हमरो अटका बूझ बताइयो, बाद में जाइयो गाँव। सो पहली लाइन जो है वाहे आपको ध्यान से लिखने हैं कि 4 परदेशी 16 नारी, अलग अलग हैं नाव। सो जे सबके आपको बताने हैं कि कितनी और कौन चीज़ भाई, जो आज को अटका है, कहूँ दूर ढूंढबे नहीं जाने आए, बस अपने संगे है। तो हम आपको भेद बता दे रहे हैं और एक के आगे अब हम बस जो हमने कही थी नहीं कि और अपन चर्चा कर रहे हैं महाराणा प्रताप जी की। तो महाराणा प्रताप जी की चर्चा करवे के लाने हमारे मन में एक बात आई कि उनको भाला, उनकी तलवार

तो सब जान आते हैं कि यही से उनने युद्ध लड़े। मानो भैया युद्ध एक और चीज से लड़ो तो उनने वो है तो उनको अपनो चेतक घोड़ा। चेतक घोड़ा के बिना महाराणा प्रताप की बात अधूरी रह जात है। हाँ तलवार के बिना और भाला के बिना सुई रह जात है, मानो चेतक की तो बात ही निराली है। सो चेतक की बात ऐसी कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के वफादार घोड़ा चेतक ने उन्हें जख्मी हालत में सुई सुरक्षित निकाल के ले गए थे और अंत समय में वे चेतक ने बिल्कुल सुरक्षित जगह पर पहुँचावे के बाद प्राण त्यागे थे। माने इतनों जख्मी हाथ हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घोड़ा कि वो एक कदम न चल पातो, मानो तो सुई उनने प्रताप के ले के और सुरक्षित जगह पर पहुंचा के ही फिर बाद में प्राण त्यागे। महाराणा प्रताप देखत रह गए, असुआ बहात रह गए, इतनो अच्छो साथी वफादार चेतक घोड़ा है खोद तो क्या सो चेतक घोड़ा है। तो बाकी बात है सुन लो तनक, कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। माने धरती में तो उसके पांव रहते ही नहीं थे, या तो दुश्मन के सिर पे पांव रहते या तो फिर वो आसमान में दौड़ बिल्कुल उड़वे के जैसे दौड़ लगाते। तो ऐसे सुंदर चेतक घोड़ा के जो स्वामी हते महाराणा प्रताप उनकी आज जयंती है। और रही बात तलवार की, तो तलवार की बात जय कही के हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ऐसी सफल जवानी उनने करी, ऐसी अमरता के प्राप्त भयवे और ऐसा ही उम्दा कर माने देशभक्ति की भावना उनने अपने देश के वीर जवानों के मन में सुई भरी है। और ऐसे जो उनके देशभक्ति के प्रति उनने जो गुरु की मानना पाई है और जो उनने प्रेरणा जगाई है देशभक्ति के लाने सभी वीर जवानों के मन में, भारतीयों के मन में, उनके प्रति उनके देशभक्ति के प्रति हम एक और गीत की तरफ चलत हैं, अपनी गम्मत आगे बढ़ाऊ थे।

0: हाँ तो किसान भैया हरो, देखो कितनी उम्दा बात है कि अपन गुरुजी के ज्ञान के बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं, गुरुजी से बिना आज्ञा लें कोई काम नहीं कर सकें। और जब प्रकृति से सुई सो कहते हैं कि जब तक जो जीवन रहे सीखो वचन विचार और मन प्रकृति उत्तम रहे सुखी रहे संसार। सो भैया देखो अब हम तन्नक आपको एक बेरा अटका और दोहरा दें कि चार परदेसी 16 नारी अलग अलग हैं नाव और हमरो अटका बूझ बताइयो बाद में जाइयो गाँव।
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
0: हाँ तो किसान भैया हरो, देखो अब ऐसो है कि अपन अटका की बारी आई, सो हमने अटका दोहरे आदा हो एक बार और आप और लिख लो। चार परदेसी 16 नारी अलग अलग हैं नाव और हमरो अटका बूझ बताइयो बाद में जाइयो गाँव। और अब हम तनक एक बात बता रहे आप औरों के कि भाव का के हमारे पुरा में बहुत बड़े शंकर जी हैं और बड़े शंकर जी के ऊपर बहुत अच्छो बड़ो घट चढ़ाव है सभी जनों ने मिलके। तो फुआ बाई उतर से आ रही थी भग्गो फुआ, सुबह कहन लगी के जो पेंट सो बचो है तनक तो कछु में पोत न हो तो पोत लो। तो हमने कही कि फुआ भाई तुम सी लगी हो, जे घट में पोत दो अच्छे बढ़िया कंगूरा बना दो, अच्छी बढ़िया पेंटिंग बना दो, तुमसे तो सब कछु बनत। तो कहने लगे हाओ हमसे जो नहीं बनाते हैं सो हम तो ढेक धार के लीप बे पोते बारे आए। तो हम कि पोत लो का है वो में कछु दिक्कत थोड़ा हूँ है, पोत भी मैं सुई वही पेंट लगा तो पेंटिंग कर भी मैं अपनी कला बता भी मैं सुई पेंटिंग कर भी मैं लगा थे पेंट। तो वे कह लगी कि अब मैं बुढ़ापे में कहाँ को पेंटिंग सीख लूँ, कौन कला या बता लगी मैं है। तो हमने कही नहीं फुआ भाई देखो बुढ़ापे की बात न करो, सीखवे की बात तो कला की बात कोई भी उम्र में हो सका था। वे रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना था, उनने तो बिल्कुल 60 साल की उम्र में पेंटिंग की कला सीखवे शुरू करो तो, और उनके मन में तो बहुत ही कई कलाएं सीखवे को मन है। तो वे कहने लगी कि तुमसे जब भी कोई बात करो तो तुम ऐसे बड़े बड़े जनों को नाम लेने लगती हो जिनके बारे में तो सबई कोई जाना जरूर है, मनो हम का उनकी बराबरी कर सकत। तो हम कहीं नहीं फुआ भाई कला में सीखवे में कोई ज्ञान सीखवे में कोई की कमी और कोई की अधिकता ही नहीं देखी जात, बस मन देखो जात है कि वे कितो मन से का कर सकते हैं और का सीख वो चाहते हैं और का नहीं सीख वो चाहते हैं। तो अपन अगर देखें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तो बात ही निराली है, कैसे के देखो उनने तो कई बनी किताबें सुई लिखी, उन्हें तो किताबों पर नोबल पुरस्कार मिलो हैं, और उनने कई बनी कलाएँ विद्यालय में टीचिंग करी मास्टरी करी सब बातें। तो फुआ भाई कहने लगी कि तुम हमें ऐसे नहीं, हमें सब बातें उनकी बताओ जब हम जाने कि हाँ उनने कौन कौन चीज़ें कब करी तो हम सोई कोशिश कर हैं। 60 साल की तुमने पेंटिंग की तो बता दी, मन भी तो बचपन से हुन्ने रिहते। तो हम कही रुक जाओ तनक अपन गम्मत है आगे बढ़न दिए, फिर बाद में हम फुआ भाई की बातें बते हैं।

0: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: हाँ, तो किसान भैया हरो, देखो जैसे हमारी फुआ बाई जानबूझा हती के, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हमें पूरे सिलसिले से बताओ, तो हम उन्हें बता रहे थे, सो वही बात हम आज इतयाब चौपाल में बता रहे हैं कि 1861 में मई के महीना में तो उनको जन्म भव, तो और जनगण मन और आमार सोनार बांग्लादेश नोबेल पुरस्कार साहित्य में पहले व्यक्ति ऐसे रहे जिनने के गीतांजलि किताब में नोबेल पुरस्कार पाओ, और दुनिया के ऐसे कवि जिनने रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों को राष्ट्रगान लिखो, भारत को जनगण मन और बांग्लादेश को आमार सोना बांग्लादेश। तो आमार सोना बांग्लादेश श्रीलंका के राष्ट्रगान पर अभी सुई उनकी छाप दिखाई दे थे, अगर उनके शिष्य को नाम ने आतो और नहीं को आतो तो तीन देश के राष्ट्रगान के रचयिता कहला जाते। मानो जो श्रीलंका के राष्ट्रगान को जो रचना करी है जिनने, बे सुई उन्हीं के शिष्य आए, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। सो ऐसी दो दो देश में उनकी रचनाओं को राष्ट्रगान के रूप में सम्मान मिल रहा है। और जनगणमन की रचना 1911 में भई थी और एक पहली बार वही साल कांग्रेस के 27वें सत्र में गाँव गाँव। तो कैसे जनगणमन के बारे में सभी कोई जानबूझाहत है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखो तो है, मानो एक है तो मान सम्मान कायदा हो गाओ, तो मान सम्मान की मन की उनकी भावना हती और अपने देश के ऊपर से भी लिखो चाहते। लिखो तो उनने बहुत ही रचनाएं लिखी हैं, बहुत ही मुद्दी रचनाएं हैं उनकी। अगर हम उनकी रचनाओं के नाम का छू दो चार आप औरों के बीच में रखें तो यही बात से सिद्ध होते हैं कि वे बाल मन के सुई समझाते और बड़ों के हिसाब से सुई लिखाते। उपन्यास उनने लिखी गोरा, घर है बाहर है, चोखेर वाली और योगा योग, और कहानी संग्रह सुई कई लिखे, कई संस्मरण लिखे, कई जीवन स्मृतियाँ लिखी और नाटक सुई लिखे, और कविताओं में इतनी सरलता रहती उनकी कि जैसे बच्चों के लाने लिखो कि देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के बने और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, बिमल बने प्रभु बिमल बने, बिमल बने प्रभु बिमल बने। तो ऐसे मन की विमलता से भरपूर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, देशभक्ति से भरपूर और रचनाओं के लाने तो साहित्य उनके अंदर इतो कूट कूट के भरो, तो कभी पढ़वे के लाने गए थे तो अपनी मन की बातों है कागज पर उकेरत रहते, उन्हें आधी वकालत छोड़ के और वे आ गए और उनकी बहुत बड़ी जागीर हती, सो भी बहुत उम्दा काम करत रहे। मानो आगे की बात हम बते हैं तनक अपनी जा चलन लगे, गम्मत आगे बढ़े।

जो गीत आप औरों को हमने इसे सुनवाओ के छोड़ जाओ भारत हमारो हमें का करने तुम्हारो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सुई नाइटहुड की को सम्मान अंग्रेजी सरकार ने दो तो मनो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छोड़ दो तो, और उनकी मनसा जय हो गई थी कि हमारो भारत देश छोड़ के अंग्रेज सुई चले जाएँ। वैसे तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलो तो साहित्य पे, तो वो मिलो तो माने स्वीडिश संस्था के द्वारा। सो जे तो अपनी बातें भई अपने आज रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती के उपलक्ष्य में और अपने महाराणा प्रताप जी के जयंती के उपलक्ष्य में। हमरे आज को अटका को जवाब देवे के लाने 15 दिन के लाने आप उन्हें पता लिख लो, कृषि जगत कार्यक्रम गम्मत द्वारा केंद्र उपनिदेशक आकाशवाणी जबलपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 14 कटंगा जबलपुर, और पिन कोड है 48200001 मध्य प्रदेश। यही पता पे आपको 15 दिन के अंदर अंदर चिट्ठियां भेजने हैं। हम अटका फिर से दोहराए दे रहे हैं, 4 परदेशी 16 नारी अलग अलग है नाव, हमरो अटका बूझ बताइयो बाद में जाइयो गाँव और अब हो रही चलवी की बेरा। तो सभी किसान भैया बहनों से प्रभा बहन की राम राम और जय जवान जय किसान।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8 बजने का है। कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बढ़ता दायरा। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर देवाशीष प्रूस्ती, एडिशनल सेक्रेटरी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वित्त मंत्रालय, और मिस सुमित कौर कपूर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PFRDA। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: हम शुरू करना चाहेंगे देवाशीष जी आपसे। 11 वर्ष हो रहे हैं 3 योजनाओं को, जो जन सुरक्षा योजनाएं हैं, जिनमें पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इससे आप कैसे देखते हैं भारत के सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को, यह कैसे मजबूत कर रहा है और

0: पिछले 11 वर्ष में इसकी यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं और इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी।
1: आज 11वां सालगिरह है। दो महत्वपूर्ण जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसी तारीख को 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा

0: और जो दूर दराज क्षेत्र में जो वंचित ग्राहक है उन सभी को 2 लाख रुपए का ये आवश्यक जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं और उनके वित्तीय समावेशन को ही बढ़ावा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि आम नागरिकों के जीवन में कोई अगर ऐसे अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाता है तो उनको समय पर ये वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है। इन योजनाओं की एक बड़ी उपलब्धि इनकी सरलता, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, कम प्रीमियम और वित्तीय समावेशन पहलों के तहत बैंकों के जो तमाम शाखाएं हैं और पोस्ट ऑफिस के तमाम शाखाएं हैं ये सभी इनके डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े हुए हैं। तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है और
1: जी
0: वित्तीय जागरूकता को भी बढ़ाया देता है। और सबसे बड़ी बात है कि औपचारिक जो वित्तीय प्रणालियां हैं, जो हमारे फॉर्मल प्रोसेसेस हैं, उनमें नागरिकों के विश्वास को ये मजबूत किया है। मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहूंगा। अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लगभग 27 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं।
1: जी
0: और इसके अलावा शुरुआत से अब तक PMJJBY के तहत लगभग 10,60,000 लाभार्थियों को 21,200 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान किया गया है। और इसी प्रकार PMSBY में 1,80,000 लाभार्थियों को लगभग 3,600 करोड़ रुपए का दावे का भुगतान किया गया है। और ये जो क्लेम भुगतान किया गया है इसकी जो एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो होती है वो लगभग 99.5% से ऊपर है। कहने का
1: जी
0: मतलब है कि अगर 100 दावे कंपनी के पास आते हैं तो उनमें से 99.5 दावों का उन्होंने भुगतान कर दिया है। यही एक विश्वास की कड़ी को आगे बढ़ाया है।
1: हम इसका पूरा अगर हम आपके पास आएं और बात करें अटल पेंशन योजना की, तो ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण अगर हम इसे कह सकें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एक तबका है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिनके पास एक रेगुलर नौकरी नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है या जिसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज वे में वो काम करते हैं, तो उनके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक उतना ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन जाता है, खास करके जब वो 60 की उम्र को पार करते हैं। तो इसके मद्देनजर अटल पेंशन योजना जहां तक हम समझते हैं इसने काफी हद तक इस कंसर्न को एड्रेस करने में मदद की है, और आंकड़े बताते हैं कि 9 करोड़ से भी अधिक लोगों ने नामांकन करवाया है इस योजना में। तो आप इस बढ़ती ग्रोइंग पार्टिसिपेशन जो है इस योजना में, इसे कैसे आप देखती हैं और कैसे इस योजना की जो शुरुआत हुई और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी लोगों में, ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, कैसे देखती हैं आप इसे?
2: हमारे यहाँ 85% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनकी रेगुलर इनकम तो होती नहीं है। जब उनके पास काम हुआ तो इनकम आ गई और जब काम नहीं है तो इनकम नहीं है। और वो अपने आज के खर्चे के बारे में सोचते हैं, दूर के बारे में सोच नहीं पाते
1: जी
2: हैं।
1: जी बिल्कुल
2: तो इस
1: बिल्कुल
2: कारण से वो अपने 60 के बाद का तो वो बिल्कुल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। तो इस दिशा में जब हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारी सोसाइटी जो है, जो आज यंग है, आज युवा है, पर धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेगी ये पीढ़ी। और आज जो 10% हमारी जो जनसंख्या है वो सीनियर सिटीजन या कहिए कि 60 से ऊपर है,
1: जी
2: परंतु
1: बिल्कुल
2: 2050 आते आते तक ये 20% हो जाएगी और हम करीब 30 करोड़ लोग ऐसे और जोड़ देंगे जो 60 को पार कर चुके
1: पार कर
2: हैं।
1: जाएंगे।
2: और अगर इन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए या अपने वृद्धावस्था के लिए अगर कोई प्लानिंग नहीं की तो इनके पास इनकम का या आय का कोई भी स्रोत नहीं होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए पेंशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का या फिर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही एक हक नहीं है, बल्कि ये सबके लिए होना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मई 2015
1: पंद्रह
2: में
1: को
2: अटल पेंशन योजना का जो है अनाउंसमेंट किया था। और आप देखिए कि इसी में जब पेंशन का कॉन्सेप्ट भी लोगों को नहीं मालूम था कि उनके लिए भी रिटायरमेंट इनकम कुछ हो सकती है, ये उनको नहीं मालूम था, परंतु इसी दौरान 9 करोड़ 6 लाख लोग अब अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं।
1: जी
2: और इसका कारण ये है कि ये बहुत ही सरल योजना है। उनको सिर्फ बताया जाता है कि अगर आप 18 साल के हैं तो आपने अगर सिर्फ 42 रुपए
1: जी
2: प्रति
1: जी
2: माह जोड़ दिए 60 साल तक तो आपको 1,000 रुपए इनकम आपको मिलने लगेगी, आपके बाद आपके पति या पत्नी को मिलने लगेगी, और जितना पैसा आपका इकट्ठा हुआ है पति पत्नी के गुजर जाने के बाद आपके नामिती को भी मिलने लगेगी। सो ये जो तीन बड़े बड़े उनको जो लाभ मिलते हैं सिर्फ 42 रुपए अगर आप 18 साल के हैं जुटाने पर, तो उनको भी समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं

0: अपने लिए एक बुढ़ापे का सहारा इकट्ठा कर रहे हैं। कहा जाता है कि आजकल के जमाने में जैसे हम दो बच्चे होते हैं हमारे, तो पेंशन का जो खाता है वो हमारा तीसरा बच्चा है, और उसको उतना ही ख्याल रखना है हमें, हमारे को उसको वैसे ही बड़ा करना है क्योंकि वो आपका ख्याल रखेगा बुढ़ापे का। ये दो
1: जी
0: बच्चे तो रहेंगे आपके साथ, पर उनपे निर्भर क्यों होना है, वो आपके
1: जी
0: आसपास रहेंगे इमोशनल सपोर्ट के लिए, पर ये तीसरा बच्चा आपका बुढ़ापे में ख्याल रखेगा, तो इसका आप अभी से इसको बड़ा कीजिए। इसीलिए इस अटल पेंशन योजना जो है काफी लोगों ने अपनाई है, और इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल रहा है। बैंकों में हर शाखा को हम टारगेट देते हैं और वो सरलता से समझाते हैं, और लोगों ने इसीलिए अटल पेंशन योजना को अपनाया है।
1: तो मिस कपूर, अगर हम बात करें आयु सीमा की, कि क्या कोई, जैसे 18 वर्ष की बात आपने की कि 18 वर्ष का जब व्यक्ति एक बार हो जाता है तो इस योजना में वो नामांकन अपना करवा सकता है, तो कोई पूरी सीमा भी कोई है आयु की है?
0: जी 18 से 40 वर्ष, क्योंकि 20 साल का समय चाहिए आपको उतनी मात्रा इकट्ठा करने के लिए कि वो आपको एक रेगुलर इनकम दे सके,
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसलिए 18 से 40 तक आप इसमें एनरोल करा सकते।
1: जी देवाशीष जी, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, हम समझना चाहेंगे कि इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जैसा आंकड़े बता रहे हैं, आपने भी बताया, 27 करोड़ से अधिक एनरोलमेंट हो चुके हैं और इतना जो ग्रोइंग पार्टिसिपेशन इसमें, जो भागीदारी हो रही है जनता की, वो स्वाभाविक रूप से ये जताता है, ये हमें बताता है कि किस हिसाब से और किस तरह हमारे जो जनता है वो इस योजना में, उन्हें ट्रस्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं।
2: जैसे कि मैंने पहले बताया कि आम आदमी के जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसे अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए ये जो योजना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब इसको लॉन्च किया गया था
1: जी
2: 2015 में। और ये योजना जैसे 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के जो है सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता है, और जो इसमें शामिल होने के लिए तैयार है उनको एक सहमति पत्र देना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही सरल है और उसमें ऑटो डेबिट की सुविधा भी जो है दी गई है। इस योजना के तहत जो जोखिम कवरेज है, जो रिस्क कवरेज है, वो 2 लाख रुपए तक का है, और जो बीमित व्यक्ति है, इंश्योर्ड है, उसकी मृत्यु होने पर किसी भी कारण से, कोई ऐसे कंडीशन नहीं है, तो ये मैच्योरिटी सम 2 लाख रुपया उनको तुरंत दे दिया जाता है उनके परिवार को। इसके लिए जो सालाना प्रीमियम है वो केवल 436 रुपया है, जो कि ग्राहक के बैंक या उनकी जो पोस्ट ऑफिस से ऑटो डेबिट किया जाता है, को बार बार परेशानी नहीं होना पड़े कि बैंक के या पोस्ट ऑफिस के पास जाने के लिए। उन सभी लोगों की सुविधा के लिए जो पॉलिसी अवधि के बीच में अगर पहली बार इस योजना के तहत नामांकन कर रहे हैं, तो उनका एक प्रोराटा प्रीमियम का भुगतान भी करने का प्रावधान है। मान लीजिए कि किसी ने दिसंबर में अगर ज्वाइन किया है तो उनको पूरे साल का प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है, उनका जो है प्रोराटा जितने महीना उस
1: जी जी
2: वित्तीय
1: जी
2: वर्ष में बचते हैं
1: जी
2: उनका वो प्रीमियम देना होगा। एक इसमें कंडीशन इतना ही है कि नामांकन की तारीख से, एनरोलमेंट की तारीख से 30 दिन की जो है अवधि को लियन पीरियड कहते हैं, और इस योजना में नामांकन की तारीख से पहले 30 दिनों की अवधि के दौरान अगर कोई उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो बीमा कवरेज उनको नहीं मिलेगा और उसके पश्चात रिस्क शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अब तक 21,000 करोड़ रुपए के जो है दावे का भुगतान किया जा चुका है। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े मैं रखना चाहूंगा कि ग्रामीण जो लाभार्थी है लगभग 17 करोड़ है, जो कि बैंक एनरोलमेंट के 73% है, और हमारे महिला लाभार्थी जो है उनकी संख्या लगभग 12 करोड़ 70 लाख है, जो कि कुल बैंक एनरोलमेंट के 54% है। तो ये आंकड़े जो है इस स्कीम की लोकप्रियता और समावेशिता और आने वाले समय में इस पे और मास रूप में जोड़ने के लिए एक स्पष्ट संकेत देती है।
1: हम आपसे समझना चाहेंगे, और बात हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के यहाँ, क्योंकि ये योजना किस तरह से काम करती है और किस तरह से ये एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है अगेंस्ट एक्सीडेंटल रिस्क, जो कि आम जनता को फेस करना पड़ता है अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में। 20 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें प्रदान करती है, और आंकड़े बता रहे हैं कि ये लगभग लगभग 58 करोड़ से भी अधिक नामांकन अभी तक हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक यूनिक सा एक स्कीम है, तो ये जो इनिशिएटिव है भारत सरकार की, इसे कैसे देखती हैं और कितना ये महत्वपूर्ण है, क्या स्थान रखता है हमारे आम जनता के जीवन में?
2: ये योजना एक्चुअली 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए सरकार ने लागू किए हैं जिनका किसी भी बैंक में या डाकघर में अकाउंट से सेविंग बैंक पासबुक है, और इस योजना में भी शामिल होने के लिए उनको एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी के लिए अपनी सहमति देना होता है। और इस योजना में जो रिस्क कवरेज

0: है कि अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाते हैं या फिर अगर कोई पूर्ण स्थायी विकलांगता जिसको कहते हैं परमानेंट डिजेबिलिटी की स्थिति में 2 लाख रुपया, और अगर आंशिक डिजेबिलिटी हो जाती है एक एक्सीडेंट में तो उनमें 1 लाख रुपया का जो अश्योर्ड है वो मिलता है। और ये कवरेज केवल साल के 20 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर मिलता है। खाते धारक की बैंक या पोस्ट ऑफिस से सीधे ऑटो डेबिट हो जाते हैं, उनको बार बार बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार की प्रोडक्ट से अब तक 58 करोड़ से अधिक नामांकन होकर 3600 करोड़ रुपए के जो है दावा के भुगतान किया जा चुके हैं। जहाँ तक हमारे ग्रामीण लाभार्थी हैं वो लोग करीब 38 करोड़ इनमें जो है नामांकित हो चुके हैं, और हमारे जो महिला हैं वो करीब 27 करोड़ इनमें नामांकित हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है वित्तीय समावेशन का एक स्पष्ट द्योतक है।
1: जी, हम इसका पूरा आपके पास हम आना चाहेंगे। ये 11वां वर्ष है जब इन योजनाओं की शुरुआत हुई 2015 में। साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवाशीष जी ने भी बताया कि किस तरह से और खास करके ग्रामीण इलाकों में जो जनता का समावेशन हुआ है ऐसे स्कीम्स में और किस तरह से लाभ पहुंच रहा है उन लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वर्षों में आप किस तरह से देखती हैं इन योजनाओं का विस्तार और साथ ही साथ कुछ और नई संभावनाएं अगर आपको दिखती हों तो?
2: जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि अब तक इसमें 9 करोड़ से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। अब ये वित्तीय समावेशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, चाहे वो ग्रामीण से हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो गिग वर्कर्स हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। इसमें लगभग 50% प्रतिभागी जो है वो महिलाओं की है, और 25,000 ट्रांसजेंडर भी जुड़ चुके हैं। और इन्होंने छोटे छोटे सेविंग्स करके अब तक इसमें AUM जो है वो लगभग 51,000 करोड़ से ऊपर है। सो अब जो हमारा जो टारगेट है 2031 तक का, वो लगभग 17 करोड़ का है। सो हम इसको डबल के करीब ले जाने का सोच रहे हैं। जो पिछले 9 साल में किया वो अगले हम 5-6 साल में करेंगे। और दूसरा जो AUM है वो भी नेचुरली जो पुराना AUM है उसके ऊपर ग्रोथ होगी। 8, 8.5, 9% की ग्रोथ उस पे 9% की हो रही है, और भी कंट्रीब्यूशन आएगा। सो AUM भी बढ़ेगा। सो इसका हमारे को डबल लाभ होता है। क्यों?
1: जी
2: क्योंकि एक तो जो माइक्रो लेवल पे है जो नागरिक हैं उनके लिए ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी का एक रास्ता खोलते हैं। दूसरा जो ये AUM एकत्रित होता है ये कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज होता
1: जी
2: है।
1: बिल्कुल
2: इस तरह से पेंशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया,
1: बिल्कुल
2: इसमें
1: बिल्कुल
2: इनका बहुत बड़ा रोल पेंशन फंड्स का।
1: जी।
2: और इससे हमारी वित्तीय समावेशन में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है।
1: देवाशीष जी, सुमित जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, अपने विचार रखे, साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत
2: बहुत
0: शुक्रिया
2: बहुत
0: आपका, बहुत
2: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8:15 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। गीत भरत व्यास का, संगीत आदि नारायण राव का। फिल्म का नाम है सुवर्ण सुंदरी।

कार्यक्रम का अगला गीत मन्नाडे की आवाज में है, बोल राजा मेहंदी अली खान के, संगीत मदन मोहन का। फिल्म का नाम है नवाब सिराजुद्दौला।

राम राज्य फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, भरत व्यास के बोल थे और वसंत देसाई का संगीत। आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: चाचा जिंदाबाद। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और मदन मोहन का संगीत। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत और अब इंतजार समाचार संध्या का दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUM

0: मिल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और

0: गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से, मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। आवाज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दी कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगु थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेते थे और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरी नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खांटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
0: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई

0: विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
1: ये दिन महज एक तारीख नहीं बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
0: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां सात समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR।
1: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
0: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस पीपल टू पीपल टाइज जो हमारे दो तीन वर्टिकल हैं उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र वो विश्व में हैं और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट विदेशी आर्टिस्ट हैं जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है। तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा योगा डांस एंड म्यूजिक एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
3: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम AK जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और

0: PhD का कोर्स भी पूरा किया था. उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ. मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में, और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए. हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के दो टूर ले पाए, और हम गए थे मुंबई गोवा, और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे. और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए. और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी, और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है. और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए, और आपको सफलता मिलेगी.
1: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है, या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है, तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं.
2: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक, आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है. चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो, या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है.
1: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है, जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं.
2: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं, बल्कि वो अनुभव बन चुका है, जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं. संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा,
1: और मैं प्रांजल.
3: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी सौ सौ रंग. एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली, और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर. आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी. वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं. सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी. वोकल फॉर लोकल हुनरमंद.
4: मेरा नाम सीता जाखड़ है. एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ. 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ, और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ. तो उसी से मेरा आइडिया है. मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया. फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया. फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट को. फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है. मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ. वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना डीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, इससे कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए. तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ. बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं. पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ. जैसे अपने शेखावटी की हवेलियाँ मैंने बनाई है, इससे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ. मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है.
5: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ. मेरा जो काम है वो सांझी कला में है. मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ. और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है. हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है. तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ. जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से. तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना. तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है. बहुत कम आर्टिजन हैं जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं. तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए. जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना. इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म

0: या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादुगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
1: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है, जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
3: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
4: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
3: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
3: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है, बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
5: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज हैं, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रैली ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया, उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
4: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद,
3: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
4: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी।

0: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
1: भारत में और भारतीय वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
0: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
0: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए, पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
5: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, रेनाउंड फॉर हिज डिस्टिंक्टिव स्टाइल एंड एक्सेप्शनल टोनल क्वालिटी। His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was राग जनसम्मोहिनी। Continuing his recital, he now presents राग आभोगी। मध्य लय एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय।

0: कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजूमदार। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। ही वाज अकंपनीड ऑन तबला बाय उजित उदय कुमार। दिस प्रोग्राम वाज अर्लियर रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम TV के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक

गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद